नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 11 जून सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडप

0: में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है। सत्य जीवन का

ईश्वर केवल किसी मूर्ति, स्थान या बाहरी शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान चेतना और सत्य के स्वरूप हैं। भजन के माध्यम से व्यक्ति का मन ईश्वर से जुड़ता है और उसे मानसिक संतोष तथा आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है।

जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान स्वयं को हारा हुआ, निराश और असहाय महसूस करता है। चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे समय में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा भगवान बनते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें केवल समाधान ही नहीं बल्कि कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है।

0: पाठ का।
1: पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के बिना जीवन नीरस और अधूरा है। प्रेम मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है, आपसी भाईचारे दया और करुणा की भावना को बढ़ाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने चिंतन।
1: मानव सभ्यता के इतिहास में प्रसन्नता एक ऐसा शब्द रहा है जिसकी हर खोज हर दार्शनिक वैज्ञानिक और सामान्य व्यक्ति ने की है। अक्सर हम प्रसन्नता को एक उपलब्धि मान लेते हैं, जैसे कि एक अच्छी नौकरी, बड़ा घर या ढेर सारा धन मिल जाने पर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हमने सुख सुविधाओं के अंबार तो लगा लिए हैं, लेकिन प्रसन्नता हमसे दूर होती गई। इसका मुख्य कारण यह भ्रांति है कि प्रसन्नता बाहर कहीं स्थित है। हम सोचते हैं, जब मेरी पदोन्नति होगी तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरा अपना घर होगा तब मैं प्रसन्न रहूंगा। परंतु मनोवैज्ञानिक और अध्यात्म दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि प्रसन्नता एक मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। यह कोई ऐसी घटना नहीं है जो भविष्य में घटेगी, बल्कि यह एक कौशल है जिसे वर्तमान में सीखना पड़ता है, इसलिए इसे अभ्यास कहा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से नकारात्मकता के प्रति झुकाव रखता है। हमारे पूर्वजों के लिए यह जरूरी था ताकि वे खतरों से बच सकें, लेकिन आज के सुरक्षित युग में यही झुकाव हमें छोटी छोटी बातों पर दुखी कर देता है। जब हम सचेत रूप में खुश रहने का प्रयास करते हैं

0: तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका अर्थ है कि बार बार सुखद विचार सोचने से मस्तिष्क के वे हिस्से मजबूत हो जाते हैं जो शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। दुनिया दो प्रकार के लोगों से भरी है, वे जो परिस्थितियों के गुलाम हैं और वे जो अपनी आंतरिक स्थिति के स्वामी हैं। प्रसन्नता का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में न दें। यदि कोई हमारी आलोचना करता है तो दुखी होना एक प्रतिक्रिया है, लेकिन शांत रहकर मुस्कुराना एक अभ्यास है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने तुलना की भावना को तीव्र कर दिया है। हम दूसरों के हाईलाइट रील को अपने बिहाइंड द सीन्स यानी असली संघर्ष से तुलना करते हैं। अपनी प्रगति की तुलना केवल बीते हुए कल से करें। दूसरों की सफलता में ईर्ष्या के बजाय प्रेरणा ढूंढें। यह स्वीकार करें कि हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग है। कृतज्ञता का अर्थ है जो हमारे पास है उसका सम्मान करना, अभाव पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रभाव और प्राप्ति पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा अभ्यास है। रोज रात को सोने से पहले उन 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप ईश्वर या प्रकृति के आभारी हैं। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके सोचने के नजरिए को बदल देता है। प्रसन्नता हमेशा अभी में होती है, दुख या तो बीते हुए कल की यादों में या आने वाले कल की चिंता में। जब आप भोजन करें तो केवल स्वाद पर ध्यान दें, जब चलें तो कदमों की आहट महसूस करें, जब किसी से बात करें तो पूरी तरह वहीं मौजूद रहें। यह माइंडफुलनेस का अभ्यास ही प्रसन्नता का द्वार खोलता है। सच्चा अभ्यास वह नहीं जो सुख में किया जाए, बल्कि वह है जो दुख में काम आए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख अनिवार्य है, लेकिन पीड़ित होना वैकल्पिक है। जीवन में असफलता, वियोग और बीमारियां आएंगी ही, लेकिन प्रसन्नता का अभ्यासी व्यक्ति जानता है कि ये स्थितियां स्थायी नहीं है। वह दुख को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि शरीर अस्वस्थ है तो प्रसन्नता का अभ्यास कठिन हो जाता है। शारीरिक गतिविधि में एंडोर्फिन निकलते हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। पर्याप्त नींद मस्तिष्क को शांत रखती है। सात्विक और संतुलित भोजन विचारों की शुद्धता बनाए रखने में मदद करते हैं। अकेलापन प्रसन्नता का शत्रु है, लेकिन केवल भीड़ में होना पर्याप्त नहीं है, अर्थपूर्ण संबंध बनाना जरूरी है। जीवन का सार इसी में है कि हम परिस्थितियों के भोक्ता न बनकर अपने भावों के निर्माता बने। प्रसन्नता का मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन इसका फल सबसे मीठा होता है। यदि हम यह समझ लें कि प्रसन्न रहना मेरा दायित्व है, तो हम छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होना छोड़ देंगे। जीवन के हर मोड़ पर मुस्कुराने का प्रयास करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे महान अभ्यास है।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन, वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण, इस विषय पर आप जानकारी सुन रहे हैं।
2: किसान भाइयों, खेती की बात न से आज हूँ तृप्ति त्रिवेदी। आपको बताऊंगा कि सोयाबीन में अपन खरपतवार नियंत्रण कसो करा। सोयाबीन में अधिकतर बोखना, गाजर घास, मोथा ऐसा जो जंगली पौधा छे वो भी साथ साथ उगी जाए, जो कि बुआई का 15-20 दिन का बाद देखाए। इनका देखते से सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हाथ से उखाड़ी उखाड़ी का अलग कर देना चाहिए। अनोखा से भी पहले अपना का ये ध्यान रखना चाहिए कि जब अपन बीज न की बुआई करा तो बीज की बुआई का समय बीज को जो अपन छिड़काव कराएं वो काम ये ध्यान रखा कि बीज खाली अपन जो फसल चाहें ओका जो है दूसरा कहीं अन्य बीज ओका अंदर नहीं हो। ओका बाद भी बुआई का 15-20 दिन बाद जब खरपतवार कभी उगी जाए तो उनका हाथ न से नियंत्रित किया जा सके, यानी निंदाई गुड़ाई करके अपन उनका हटाई सकें। पर जब पौधा बड़ा हुई जाए अनोखा साथ में भी खरपतवार उगी जाए तब अपना का समस्या न आवाज अन इन्हीं समस्या से अपन कई कर सकें निपट सकें खरपतवार नाशक न को उपयोग करके। तो यहाँ पर हूँ आपका कुछ खरपतवार नाशक न का नाम भी बताऊंगा। जैसे चौड़ी अन सकरी पत्ती न हो तो ऐसा खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम इमेज थापर

0: 10% ले सकन, एक 300 से 350 ml प्रति एकड़ डाली सकन। साथ साथ अपन कई कर सकन, इमा जापिक जैसी जो स्पेशल सोयाबीन नम डालने वाली दवाई आवत जो विशेष करी के खरपतवार को नाश करे, जो कि सोयाबीन का साथ उगी जाए, वो को भी उपयोग कर सकन। एक नाव छे इमेजो थापायर इमा जापिक। इन दुई का मिले कर छिड़काव करने से सोयाबीन की अधिकतर खरपतवार को नाश हुई जाए। एक साथ अपन कर सकन बोखना जैसा जिद्दी खरपतवार का अगर अपना का हटाना हो तो फ्यूजी फ्लेक्स अन जो छे फ्लोरीम्यूरॉन इथाइल, इनको 400 ml अन 8 से 10 ग्राम को मिक्सचर बने का प्रति एकड़ छिड़काव करने से भी अपन जो छे जो बोखना छे ऐसा बड़ा खरपतवार से बची सकान, खरपतवार को नाश करी सकान। खास अपना का सावधानी ये रखनी चाहिए कि छिड़काव का समय खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। सूखी मिट्टी में छिड़काव करने से अपनी फसल का नुकसान हो सकज। पानी की मात्रा हमेशा 150 से लेकर 200 लीटर प्रति एकड़ इस्तेमाल करनी चाहिए। ओका से दवा को फैलाओ ठीक से हो। साथ साथ संभव हो तो बुआई का बाद 20-25 दिन बाद डोरा कुल्पा करी कर अपना का खरपतवार को नाश करनी चाहिए। भाई बहन होन दवाई न को उपयोग का अपना का जहाँ तक हो नहीं करनी चाहिए। फिर भी अपना अगर बड़ा बड़ा पौधा हो ही गया जो उनके साथ खरपतवार आवे तो बुआई का तुरंत बाद सुमी मैक्स बुआई का 48 घंटा का भीतर 100 ml प्रति एकड़ डालने से लगभग 25 प्रकार का खरपतवार ये उगड़ने देती हैं। तो ऐसी अगर अपन विधि ने अपनावांगा तो अपनी सोयाबीन की फसल के साथ खरपतवार नहीं उगेगा और सारो पोषण जो छे अपनी सोयाबीन की फसल का मिलेगा। क्योंकि खरपतवारों को काम कही हो वो ऐसा पौधा है जो हमारी फसल का लिए नुकसानदायक हो सके। तो हमारी फसल का साथ में उगी जाएगा तो हमारी फसल का नुकसान पहुँचाएगा। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार जो छे उनको अपना का अपना खेत में से हटाना पड़ेगा ताकि अपना का अच्छी उपज मिले। इन्हीं बात के साथ खेती की बात से सभी भाई बहनों के तृप्ति बहन की राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपना अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है?

अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम विवरण में आपको जानकारी दें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

प्रातः 7:20 पर ज्ञान दर्शन में सुनिएगा ऋग्वेदादि भाषाई भूमिका। इस विषय पर वार्ताकार होंगी खुशबू साहू। सुनहरे पल पुराने सदाबहार गीतों का एक कार्यक्रम आपकी सेवा में हम हाजिर होंगे लेकर 7:35 से। राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। लोक संगीत में हेमलता उपाध्याय और साथियों के गाय लोकगीत सुनिएगा प्रातः 9:00 और सुगम संगीत में प्रभंजय चतुर्वेदी का गायन आपको सुनवाएंगे प्रातः 9:15 से।

शास्त्रीय संगीत में उस्ताद राशिद खां का गायन सुनिएगा, राघु का देश। कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे प्रातः 9:30 पर। प्रतिदिन की तरह जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा प्रातः 10 बजे और 10:05 पर हम लेकर हाजिर होंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम मन भावन। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये कार्यक्रम होगा प्रातः 11 बजे और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 12 बजे से। संग्रहालय से ये कार्यक्रम दिन में 12:30 पर सुनिएगा और दिन में 1 बजे आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप जानकारी हासिल करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में, साथ ही साथ मीना गोदरे की कहानी विदोह आप सुनेंगे, रूपलावण्य में बढ़ते तापमान में कैसे करें अपनी आंखों की देखभाल और सुरक्षा, फैमिली फिटनेस में किस तरह से आप चुन सकते हैं सही फूड प्रोडक्ट्स और किस तरह से हैकर की नज़र रिमोट एक्सेस डेटा पर आपकी सुरक्षा आपके हाथ, इस सेगमेंट में इस विषय पर सुनिएगा रोचक जानकारी।

0: दिन में 1:30 पर फिल्म संगीत लोक संगीत का आनंद लीजिएगा। सुगम संगीत का प्रसारण होगा 1:45 पर और फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2 बजे से। चित्रपट संगीत हम लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर। हमारे सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी युवाणी कार्यक्रम के साथ शाम 5 बजे। आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर, साथ ही आप सुनेंगे बादल शीर्षक पर केंद्रित कुछ सदाबहार फिल्मी गीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग हम आपको सुनवाएंगे शाम 6 बजे और सुगम संगीत में शीला वर्मा का गायन सुनिएगा शाम 6:30 से। लोक संगीत में हेमलता उपाध्याय के गाए लोकगीत आपको सुनवाएंगे 6:45 पर और रोजाना की तरह खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा शाम 7:20 से। मन भावन कार्यक्रम का प्रसारण होगा 9:30 पर और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित CR व्यास का गाया राग मालव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापन योग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित

0: प्रदेशानामुप राज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य चत्वारिंशदधिकैकशत कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचम् पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिक दलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन्नवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है। करती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
2: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए

0: न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा,
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा, देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा। और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक

0: केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें आधारभूत मानव पूंजी, भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार उद्यमिता और विकेंद्रीकरण विकास, स्वास्थ्य पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है, देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: इसके पूर्व एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भावनात्मक पत्र लिखा है। डॉ यादव ने इस विशेष उपलब्धि पर श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, अधोसंरचनात्मक विकास तथा देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की अंतिम सूची कल जारी कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा द्वारा जारी सूची में भाजपा उम्मीदवार तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। इससे पहले 9 जून को कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस आज इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 15 जून को शिलांग के मावक सियांग स्थित लारती परफॉर्मिंग केंद्र में पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी एनईआई इन्फ्रा शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। मेघालय सरकार 15 और 16 जून को पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और एनईआई इन्फ्रा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जिसमें पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ 8 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है, जिसके आज के अंक में हम पेश कर रहे हैं सरकार द्वारा युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कल ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीण हाट में विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प, प्राकृतिक खेती आधारित उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदर्शित वस्तुओं को देखा। वहीं मंडला की मिलेट क्वीन लहरी बाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। 12 जून को कृषि मंत्रियों का एक विशेष संवाद भी इस सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू करके यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, वातानुकूलन और वेंटिलेशन सिस्टम तथा आपातकालीन निकास द्वार और अग्निशमन उपकरण सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी। इसके साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। सामान्य परिषद ने वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक, आदिवासी संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतली कला सहित विभिन्न क्षेत्रों से 108 कलाकारों का चयन किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून आने के पहले की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। चक्रवात के दो अलग अलग सिस्टम बनने से कल कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आंधी बारिश का यह दौर कल भी जारी रह सकता है और प्रदेश में मानसून के अगले सप्ताह सक्रिय होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इंदौर और आसपास के जिलों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थयात्रा आयोजित की जा रही है, जो कि 20 जून को शुरू होगी। इस यात्रा में इंदौर के साथ धार, बड़वानी और देवास के वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का समापन कल 13 राज्यों के पारंपरिक और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति के साथ हुआ। मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने कल जिला मुख्यालय में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। शिवपुरी कलेक्टर ने आवास प्लस के लंबित आवासों की लंबित सभी किश्तों का भुगतान समय सीमा में करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे होने पर झाबुआ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुना में जिले की सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए चारा विकास कार्यक्रम के तहत साइलेज एवं गोरस ऐप की उपयोगिता विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर के ग्राम माचल में एमपीआईडीसी द्वारा अत्याधुनिक एवं एकीकृत लॉजिस्टिक हब के लिए 23 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की गई है। झाबुआ के राणापुर में एसडीएम ने फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए और पन्ना टाइगर रिजर्व में विशेष स्वच्छता पखवाड़े के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर से प्लास्टिक कचरे को हटाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ज्ञान दर्शन।

में एक छवि होती है, जंगल में बैठे साधु, कुछ मंत्र और ढेर सारे कर्मकांड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब महर्षि दयानंद ने वेदों को खोला तो उन्हें वहाँ कर्मकांड नहीं बल्कि विज्ञान मिला, उन्हें वहाँ जाति पाति नहीं बल्कि समानता मिली। स्वामी दयानंद के उन्हीं तर्कों और प्रमाणों को बहुत गहराई से आज हम समझेंगे। उस समय मैक्स मूलर जैसे पश्चिमी विद्वान और सायण जैसे भारतीय भाष्यकार वेदों का ऐसा अर्थ कर रहे थे जिससे वेद गडेरियों के गीत या जादू टोने की किताब लग रहे थे। स्वामी दयानंद ने इसके खिलाफ एक मोर्चा खोला। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि वेद महान है, उन्होंने तर्क भी दिया कि वेद महान क्यों है। इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा तर्क है वेदों की उत्पत्ति। स्वामी जी से पूछा गया कि वेद ईश्वर का ज्ञान क्यों है, कोई इंसान किताब क्यों नहीं। यहाँ स्वामी जी ने एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक तर्क रखा। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को पैदा होते ही एक सुनसान टापू या कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ कोई न हो और उसे खाना पीना मशीन से मिले लेकिन उससे कोई बात न करे, तो क्या वो बड़ा होकर कोई भाषा बोल पाएगा? जवाब है, नहीं, वो सिर्फ जानवरों जैसी आवाजें निकालेगा। स्वामी जी का यह तर्क था कि ज्ञान के बिना ज्ञान पैदा नहीं होता। नॉलेज कम्स फ्रॉम नॉलेज, जैसे आग से ही आग लगती है वैसे ही पढ़ाने वाले के बिना कोई पढ़ नहीं सकता। तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई, जब पहले इंसान यानी कि आदि मानव पैदा हुए, तो उन्हें भाषा और जीने का तरीका किसने सिखाया? उनके पास कोई टीचर नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। तब स्वामी जी सर तर्क देते हैं कि उस समय परम गुरु यानी ईश्वर ने ही ज्ञान की पहली किरण दी और वो ज्ञान वेद है। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने यह ज्ञान चार ऋषियों अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के अंतःकरण में दिया। यह तर्क डार्विन की थ्योरी से अलग एक डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है जो भाषा विज्ञान के आधार पर खड़ा है। अब हम चलते हैं इस किताब की उस हिस्से की ओर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, विज्ञान और सृष्टि विद्या यानी कि साइंस एंड कॉस्मोलॉजी। महर्षि दयानंद ने भूमिका में यह दावा किया कि वेदों में आधुनिक विज्ञान के मूल सिद्धांत मौजूद हैं और उन्होंने हवा में बात नहीं की, उन्होंने मंत्रों का प्रमाण दिया। एक बहुत ही मशहूर तर्क है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। न्यूटन से हजारों साल पहले स्वामी जी ने ऋग्वेद के मंत्रों का अर्थ करते हुए बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, उन्होंने यजुर्वेद का प्रमाण दिया। यहाँ उन्होंने समझाया कि कैसे सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी और अन्य ग्रहों को थामे हुए हैं और उन्हें घुमा रहा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि लोक लोकम प्रति आधार आधये, यानी हर लोक हर प्लेनेट एक दूसरे के सहारे टिका है आकर्षण के नियम से। सोचिए 19वीं सदी में जब भारत में विज्ञान की पढ़ाई ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, एक सन्यासी वेदों के मंत्रों से सोलर सिस्टम से समझा रहा था। यही नहीं, उन्होंने गणित पर भी बात की। अथर्ववेद के प्रमाणों से उन्होंने बताया कि वेदों में पूर्ण और शून्य का सिद्धांत है। उन्होंने विमान विद्या यानी कि एरोनॉटिक्स और तार विद्या टेलीग्राफी के संकेत भी वेदों में दिखाए। उनका तर्क था कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसलिए इसमें भौतिक विज्ञान के नियम जैसे आग और बिजली के गुण विस्तार से बताए गए हैं, जिन्हें समझकर इंसान विमान और मशीनें बना सकता है। वेद यानी वेद आपको जंगल में भेजना नहीं चाहते बल्कि आपको एक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। अब एक बहुत बड़े भ्रम की ओर बढ़ते हैं जिसका खंडन स्वामी जी ने बहुत तार्किक ढंग से किया, देवतावाद वर्सेस एकेश्वरवाद। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसका खंडन किया और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमाण रखा। उन्होंने कहा कि वेदों में 33 कोटि देवों की बात है, 33 करोड़ भगवानों की नहीं। उनका तर्क बहुत साफ था, देव शब्द दिव धातु से बना है जिसका मतलब है चमकना या देना। तो जो भी चीज हमारे लिए उपयोगी है वो देवता है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।

चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र ये सब जड़ देवता हैं, क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं। माता पिता और गुरु चेतन देवता हैं, लेकिन उपासनीय देव केवल एक है, वह है ब्रह्म या ईश्वर। उन्होंने मंत्रों का प्रमाण देकर कहा कि इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि अलग अलग भगवान नहीं है, बल्कि एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है। जैसे एक व्यक्ति पिता भी है, बेटा भी है और पति भी है, वैसे ही ईश्वर जब प्रकाश देता है तो अग्नि है, जब वर्षा करता है तो इंद्र है। इस तर्क ने यह साबित कर दिया कि वेद पूरी तरह से एकेश्वरवादी है। दोस्तों, स्वामी दयानंद का सबसे क्रांतिकारी रूप हमें इस किताब के सामाजिक खंड में मिलता है। उस दौर में यह माना जाता था कि शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। धर्म के ठेकेदारों ने इसे पाप घोषित कर रखा था। स्वामी जी ने यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र को प्रमाण के रूप में पेश किया, यथेमाम वाचम कल्याणम आवदानी जनेभ्यः। दोस्तों, स्वामी दयानंद का सबसे क्रांतिकारी रूप हमें इस किताब के सामाजिक खंड में मिलता है। उस दौर में यह माना जाता था कि दोस्तों स्वामी दयानंद का सबसे क्रांतिकारी रूप हमें इस किताब के सामाजिक खंड में मिलता है। उस दौर में यह माना जाता था कि वंचित वर्गों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। धर्म के ठेकेदारों ने इसे पाप घोषित कर रखा था। स्वामी जी ने यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र को प्रमाण के रूप में पेश किया, यथेमाम वाचम कल्याणम आवदानी जनेभ्यः। इसका अर्थ है, ईश्वर कह रहा है कि मैंने यह कल्याणकारी वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वंचित वर्ग सबके लिए दी है। यहाँ स्वामी जी का तर्क दिल को छूने वाला था। उन्होंने पूछा, ईश्वर सबका पिता है, क्या कोई पिता अपनी बेटी को या अपने कमजोर बेटे को ज्ञान से वंचित रखेगा? अगर ईश्वर ने सूरज की रोशनी सबको बराबर दी है, हवा सबको बराबर दी है, तो ज्ञान पर किसी एक जाति का कब्जा कैसे हो सकता है? इस एक तर्क ने जातिवाद की जड़ों पर प्रहार किया। उन्होंने गार्गी और मैत्रेयी जैसे विदुषी महिलाओं का उदाहरण देकर सिद्ध किया कि वैदिक काल में स्त्रियां न केवल पढ़ती थी बल्कि ऋषिका भी होती थी। इसी कड़ी में उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि वेद जन्म से नहीं, इसी कड़ी में उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि वेद जन्म से जाति नहीं मानते, बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव से वर्ण मानते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तभी बनता है जब वो डॉक्टरी पढ़े, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तभी है जब वो ज्ञानी हो। अगर वो अनपढ़ है तो वो वंचित है। यह फ्लूइड सोशल स्ट्रक्चर वेदों की मूल देन थी, जिसे समाज ने भुला दिया था। अब हम बात करते हैं उपासना और मूर्ति पूजा की। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने साफ किया कि वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। उनका तर्क बहुत व्यवहारिक था, यानी कि प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक है, जो चीज हर जगह है, आप उसे एक मूर्ति में सीमित कैसे कर सकते हैं? और अगर ईश्वर निराकार है तो उसका आकार कैसे बनाया जा सकता है? उन्होंने यज्ञ की असली परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है। उन्होंने इसे देव पूजा, संगतीकरण और दान के रूप में परिभाषित किया। देव पूजा विद्वानों का सत्कार करना और प्रकृति यानी कि जल वायु को शुद्ध रखना है। वैसे ही संगतीकरण समाज के लोगों का मिलजुल कर विज्ञान और कला को बढ़ाना है। वहीं दान अपनी विद्या और धन से दूसरों की मदद करना है। स्वामी जी ने उस समय चल रही पशु बलि का वेदों के प्रमाण से घोर विरोध किया। उन्होंने निरुक्त और व्याकरण के तर्क देकर समझाया कि जहाँ वेदों में अश्वमेध यज्ञ या गोमेध शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ मेध का अर्थ हिंसा नहीं बल्कि संगमन या उपयोग है। उन्होंने साबित किया कि वेद अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और बलि प्रथा स्वार्थी लोगों की मिलावट है। स्पीच के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हुए हमें स्वामी जी के दार्शनिक सिद्धांतों को भी समझना होगा, विशेषकर त्रेतवाद। अद्वैत
वेदांत मानता है कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, लेकिन महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर तर्क दिया कि तीन चीजें अनादि हैं: ईश्वर जो कि रचयिता है, जीव जो कि कर्म करता है और फल भोगता है, और प्रकृति वो कच्चा माल जिसे यह दुनिया बनी है। उनका तर्क था कि अगर सिर्फ ईश्वर ही है और हम सब ईश्वर हैं, तो पाप कौन कर रहा है? क्या ईश्वर खुद को अज्ञानी बनाकर पाप करेगा? यह संभव नहीं है। इसलिए आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा का लक्ष्य मोक्ष पाना है, ईश्वर में मिल जाना नहीं, बल्कि ईश्वर के आनंद को भोगना है। यह तर्क व्यक्ति की जिम्मेदारी को तय करता है कि आप अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अंत में महर्षि दयानंद ने जीवन जीने की कला यानी पंच महायज्ञों की बात की है, जो इस किताब का व्यवहारिक पक्ष है। उन्होंने कहा कि एक गृहस्थ को रोज 5 काम करने चाहिए: ब्रह्म यज्ञ यानी कि स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना, देव यज्ञ हवन करना जिससे कि वातावरण शुद्ध हो, पितृ यज्ञ अपने जीवित माता पिता की सेवा करना, बलि वैश्व देव यज्ञ अपने भोजन में से अन्य प्राणियों यानी कि कुत्ते गाय पक्षी का हिस्सा निकालना, अतिथि यज्ञ समाज के ज्ञानी लोगों की सेवा करना। यह एक पूरा लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंसान को, समाज को और प्रकृति को जोड़कर रखता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण से यह बात साफ है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मशाल है। स्वामी दयानंद ने हमें सिखाया कि अपनी विरासत पर गर्व करो, लेकिन अंधविश्वास पर नहीं। उन्होंने हमें सिखाया कि तर्क और श्रद्धा दुश्मन नहीं है। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वे साइंस के विरोधी नहीं बल्कि समर्थक हैं। अगर आप आज के दौर में भी कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपको लगता है कि धर्म और विज्ञान की लड़ाई है, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। यह किताब आपको एक अंध भक्त नहीं बल्कि एक तार्किक और बुद्धिमान इंसान बनाती है। स्वामी जी का संदेश साफ था: सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वेदों को पढ़िए, तर्क कीजिए और सत्य को जानिए। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे ज्ञान दर्शन। ऋग्वेदादि भाषाई भूमिका इस विषय पर खुशबू साहू की वार्ता। मीडिया व्यू 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: कार्यक्रम सुनहरे पल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं राहुल तिवारी। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के गीत के साथ लता मंगेशकर की आवाज में।
1: My father slept, ate, drank, went, did all, nothing but his movie. Ek Radha, Ek Meera. Ye gana papa ne Delhi mein ek function mein suna. He told Devendra Jain ki aapne jo function mein ek gana sunaya tha, wo ek baar mujhe phir suna dijiye. He sang the song again and he signed him for Ram Teri Ganga Maili. That's how Ram Teri Ganga Maili came. The beautiful part was that the way that man portrayed Ram Teri Ganga Maili. Kis tarike se is film ko banaya, isko symbolize kiya, isse convey kiya logon ko.

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं आक्रमण। इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। आइए अब सुनते हैं हीना फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज में। संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले थोड़ी देर में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रूपये के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं

0: शासन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अभिसरण साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली पांच है जो हमको पांच पांच किलो दे रहे हैं जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां

0: उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
1: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
6: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर

विपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हेमलता उपाध्याय और मंडली के गाए लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गणेश वंदना के साथ। पारंपरिक निमाड़ी लोकरचना प्रस्तुत है हेमलता उपाध्याय और साथियों की आवाज़ में।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आइए अब एक पारंपरिक लोक रचना आप सभी को सुनवाते हैं हेमलता उपाध्याय की आवाज में।

लोक संगीत में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे हिमलता उपाध्याय के गाये निमाड़ी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं प्रभंजय चतुर्वेदी का सुगम गायन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ भजन प्रभंजय चतुर्वेदी की आवाज़ में। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गणेश वंदना के साथ।

श्रोताओं, सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे प्रभंजय चतुर्वेदी के गाए भजन। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए शास्त्रीय संगीत में अब आपको सुनवाते हैं उस्ताद राशिद खां का गाया राग अहीर भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे उस्ताद राशिद खां का गाया राग अहीर भैरव। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम मन भावन। माफ कीजिएगा श्रोताओं, थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी का प्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे।
1: आलेख है विवेक दांगी का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख विवेक दांगी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। निवाड़ी जिले में आजकल मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कभी धूप है तो कभी हल्की बारिश, जिससे उमस बढ़ रही है और गर्मी अपना असर दिखा रही है। प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार आमजन की समस्याओं और शिकायतों के मौके पर त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में बीते दिनों जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के साथ आमजन की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया तथा जांच और कार्यवाही योग्य आवेदनों में से अतिशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। राजस्व शिकायतों के निराकरण में लंबित स्थिति पर कलेक्टर ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तरमीम और सीमांकन के शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व अधिकारी स्वयं फील्ड पर विजिट करें, निष्पक्ष जांच कर पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने पृथ्वीपुर निर्वाचन कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के आवेदकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। पृथ्वीपुर तहसील के अंतर्गत आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसडीएम मनीषा जैन और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जनसुनवाई को वर्चुअली जोड़ा गया था। पिछले दिनों कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ जेरोन तालाब का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब की साफ सफाई, स्वच्छता और जल संरक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलकुंभी और अन्य जलीय खरपतवार को मशीन और श्रमिकों के माध्यम से पूरी तरह से हटवाया जाए। तालाब किनारे जमा कचरा और प्लास्टिक को भी साफ करवाया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निवाड़ी जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासन के आदेश के अनुसार इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस कड़ी में दिनांक 12 जून से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकास खंड और नगरी निकाय मुख्यालयों पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर मौके पर ही लाभान्वित करना है। इसके साथ ही आमजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर में राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और कृषि सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पीएम आवास, लाडली बहना, पेंशन और राशन पर्ची जैसे प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण किया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने जिले के सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी विकास खंड या नगरीय निकाय मुख्यालय पर लगने वाले जन कल्याण शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ अवश्य लें। इसके साथ में वे जरूरी दस्तावेज लेकर जरूर आएं ताकि मौके पर ही पात्रता जांच कर लाभ दिया जा सके। जन कल्याण शिविर 12 जून से 18 जून की अवधि में समस्त नगरीय निकायों और जनपद मुख्यालयों में कुछ 5 स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आयुष्मान भारत, वय वंदन, पीएम सूर्यघर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी और वीबीजी रामजी के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण शिविर आयोजित

किए जाएंगे। बीते दिनों एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ग्राम पंचायत कुलवा में आयोजित वृहद पौधरोपण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला प्रशासन ने परमार्थ समाज सेवी संस्था के सहयोग से ग्राम पंचायत कुलवा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान चंदेली तालाब पर वृहद पौधरोपण भी किया गया। श्री राम राजा सरकार मंदिर ओरछा धाम की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के उद्देश्य से बीते दिनों कलेक्टर जमुना भिड़े की अध्यक्षता में ओरछा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया और जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मंदिर के उत्कृष्ट प्रबंधन, समन्वय और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिए गए। निवाड़ी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख था विवेक दांगी का, वाचन स्वर थे अभिषेक कटियार के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, हाजिर हैं हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपके खत जो हैं वो हमारे हाथ में होते हैं और आपकी फरमाइशें हम आप तक, आपके चाहने वालों तक पहुंचाते हैं। आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके दोस्तों का नाम, सभी का नाम इस कार्यक्रम के जरिए रेडियो के माध्यम से आप सुनते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे नए नए श्रोताओं से कार्यक्रमों के जरिए जुड़ने का मौका मिलता है। हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, अपना प्रेम जो है वो कभी फ़ोन कॉल्स के जरिए, कभी ख़तों के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं की जो पसंद है उसे रेडियो के जरिए उन तक पहुँचाकर हमें भी बेहद खुशी का एहसास होता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम मन भावन है, मैं राहुल तिवारी आपके साथ। और मन भावन कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं हमारे जिनके पत्र नियमित रूप से हमें मिलते रहते हैं। हमें खुशी होती है, हमें लगता है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम रोज़ाना उनसे मुखातिब होते हैं, रोज़ाना उनसे जुड़ते हैं। कई बार बहुत सारे नए श्रोताओं के पत्र भी हम तक पहुँचते हैं और जब हम कोई नया नाम देखते हैं ना ख़त में, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह, आज तो इस जगह से भी ख़त आया है, आज तो इन्होंने भी हमें ख़त लिखा है। तो हमारी जो खुशी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारे ऐसे श्रोता जो चाहे न्यूज़ ऑन AIR ऐप के ज़रिए इस कार्यक्रम को आज सुन रहे हों या रेडियो सेट पर जिन तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है और अभी तक उन्होंने कार्यक्रम में कोई ख़त नहीं लिखा है, मैं चाहूँगा कि ऐसे श्रोता जो हैं वे भी कार्यक्रम में ख़त लिखें। बहुत आसान तरीका है ख़त लिखने का और इसमें बहुत बड़ा कोई ख़र्चा भी नहीं लगता है। एक सामान्य सा पोस्ट कार्ड जिसकी कीमत महज 50 पैसे, 1 रुपये के आसपास है, उस पर आप ये ख़त जो है वो लिख कर हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा पता जो है वो आप नोट कर लें और फिर हम कार्यक्रम में पहली फरमाइश की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा पता है साहब, कार्यक्रम मन भावन, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, मालवा हाउस, इंदौर। और इंदौर शहर का पिन कोड है जिसके ज़रिए हमारे कार्यालय तक ये खत सुरक्षित तरीके से पहुंच सकता है, वो है 4520001, 452001। तो उम्मीद है कि हमारे नए श्रोता ज़रूर कार्यक्रम से जुड़ेंगे और

आकाशवाणी इंदौर में उनका खत भी हम अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे श्रोताओं तक पहुंचने की, उनसे जुड़ने की। और आइए आज का पहला पत्र हम शामिल कर रहे हैं हमारे इंदौर के इन श्रोताओं का। पालदाना का इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। मुखर्जी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, अन्नू, विशाल, उर्वशी, कुमारी प्रियांशी, प्रियंका, लक्की, ऋतिक, शौर्य, मुक्कू, बसंती बाई जी, किशन लाल जी, महेंद्र, मालती, सुनीता और शारदा का। लाबरिया भेरू इंदौर से हमारे श्रोता अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और बामनिया परिवार के सभी सदस्य। और एक और श्रोता इंदौर से हमारे हैं बी आर राजश्री, रौनक, रोशनी, धीरज, स्वाति और इनके परिजन। आइए आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है वापस, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आपकी फरमाइशी गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये थी पहली फरमाइश। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश की ओर। मलकापुर से हमें खत लिखा है संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, शीर सागर, सतीश सराफ, जगदीश तांवर, संजय चौहान और नगीन दास बैरागी ने। पित्रामल जिला उज्जैन बोरखेड़ा से हमें पत्र लिखते हैं विनोद मोणत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुणत। और गोकुल ग्राम परसून तहसील मालथौन जिला सागर से हमारे श्रोता हैं भागचंद साहू, अजय साहू, राज साहू, प्रेमबाई और करिश्मा साहू। आपको सुनवाते हैं गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का गीत

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जहरीला इंसान। आइए श्रोताओं, इस फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत और पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम वली और डब्लू डोम, और जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा, उल्लाह आसमा। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री धनजे, और खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिजन। आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भवन। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोताओं की फरमाइश की ओर, जो हमें भेजी है कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज ने। घंटा

मन भवन कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत रचना यानी कि गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। पसंद हमारे इन श्रोताओं की। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। शिरपुर जैन सम्राट चौक से गिरीश देशमुख, सोनाली, रेणुका, आरव, अश्विनी, मौसमी और जी वाई देशमुख। करनाल से हैं सुधीर नूतन और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमारे श्रोता हैं हरदेव मिक्का, बलविंदर बीरक, जयतेक और मिक्का बीरक। आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम में हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश। लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान नीलम इंदौर से हमारे श्रोता हैं। अनिल कौचाले, साबिहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, पूजा, राखी, मीनू और इनके परिजन, नेवासा खोपटी से बंडू लोहार, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोखर से हरिबाबू भिड़वे, श्रावण, अनिता भिड़वे और यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान मालाकार। आपको सुनवा रहे हैं जख्म फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कैफ़ी आज़मी ने इसे लिखा है, संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

0: ये लगता है कि जहां मिल गया।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है मन भावन और हम अपने श्रोताओं की फरमाइश उन तक पहुंचा रहे हैं। अगली फरमाइश लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद हसनैन पवार, दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, विनीता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी अजय और वामिका, और छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघ, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघ घे, झवर तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर उपहार फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

आयुष होता हूँ। अब बढ़ते हैं मन भवन कार्यक्रम में हमारी अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश हमें मिली है फिल्म शोले के लिए। किशोर कुमार की आवाज़ में एक गीत है, आर डी बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल। पसंद हमारे इन श्रोताओं की। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, राजिया, जुनैद, अलीना, नसरीन, जहां, आयत, मुआज और इनके परिवार के सदस्य। बालोदा लखा उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति, कैलाश प्रजापति, कुंदन साक्षी और भगवंताबाई प्रजापति। और इंदौर से हमारे श्रोता हैं अन्नपूर्णा रोड अटल चौराहा से सुरेश मंगवानी, लक्ष्मी मंगवानी, शोभा, निर्मल, ज्योति, नेहा, गोपाल, राहुल, हेमंत और समस्त मंगवानी परिवार। आइए आप सभी को सुनवाते हैं शोले फिल्म का ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम मन भवन में हमारी अगली फरमाइश और ये कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश भी है, तो इसे आप तक पहुंचाते हैं। और निश्चित रूप से हमारे सभी श्रोता जो इतनी देर से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वे भी कार्यक्रम में अपना अगला खत हम तक भेजेंगे, इस बात की हमें बेहद उम्मीद है। कार्यक्रम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पोस्ट कार्ड के ऊपर अपनी फरमाइश के गीत का नाम, अपने परिजनों का, दोस्तों का नाम, अपने शहर का नाम लिखकर हम तक पहुँचाना है और हम उसे हमारे कार्यक्रमों में शामिल करेंगे और आप तक आपका नाम और फरमाइश पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारा पता नोट कर लें एक बार फिर से, कार्यक्रम मन भवन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इंदौर मध्य प्रदेश और पिन कोड 452001। आइए कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश इन श्रोताओं की, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से MM राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रीत, रिया,

0: ऋषभ और इनका पूरा परिवार पलसीकर कॉलोनी से धनेश मटई, राकेश मटई, उमेश सहजवानी, अमिता, हनी जिम्मी, दियाना और जियांश मटई, और एक और हमारे श्रोता हैं, इंदौर से ही हैं, आपका नाम है प्रमेंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश, मंजू चौहान, कामिनी चौहान, राजकुमार यादव और आप सभी के साथ ही। आइए आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: लालच दिए पर जाने वाले लौटे नहीं, सिर्फ राहों पे उड़ते हुए सन्नाटों का गुबार छोड़ गए। कब तक कोई सन्नाटे फांकता रहे, जिंदगी तो चलती रहती है, सिर्फ गिले रह जाते हैं। और वफाओं पे झुके हुए सजदे, शायद कोई आए, कोई आवाज दे कहीं से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। ये
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन के साथ आज चुने हुए विषय पर आपसे करेंगे बात और सुनवाएंगे गीत हमारी पसंद के। दोस्तों जैसा हमारा चित्त होता है हमें संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। यदि मन में सकारात्मक और सद्भाव हो तो हर ओर अच्छाई नजर आती है। हालात भले डगमगाए लेकिन मन अच्छाई पर डिगा रहता है। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। अगर हम वहीं देखें और उससे सीखें तो रिश्ते भी बेहतर बनते हैं और मन भी हल्का रहता है। शोध से पता चला है कि दूसरों की सराहना करने से मस्तिष्क में फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं और तनाव कम होता है। जब आप दूसरों की अच्छी आदतों और गुणों को पहचानते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। दूसरों की अच्छी आदतों पर ध्यान देने से हम अनजाने में उन्हें अपने जीवन में अपनाने लगते हैं और ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। दूसरों में अच्छाई देखने का अभ्यास मस्तिष्क की संरचना तक बदल सकता है जिससे लोग स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और खुश रहने लगते हैं। तो चलिए लोगों में अच्छाई देखने के गुण और सकारात्मक रवैया यानी जित देखूं तित भला के बारे में आप क्या कहेंगे। जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो नमस्ते।
3: नमस्ते जी।
2: हमारा आज एक विषय रहता है उस पर हम आपसे बात करते हैं तो क्या आप अपने उस विषय पर आप हमें अपने विचार बताएंगे।
3: तो विषय बताएं क्या है दीदी।
2: जित देखूं तित भला, जहां हम देखें वहां हमें भला दिखाई दे अच्छाई दिखाई दे, इस विषय पर आप क्या कहेंगे।
3: जहाँ हम देखें
2: वहाँ हमें अच्छा दिखाई दे, क्या ऐसा होता है।
3: हाँ होता है ना।
2: हाँ बताइए इस विषय में आप क्या कहेंगे।
3: गांधी जी के तीन बंदरों की याद है, बुरा मत देख बुरा मत बोल बुरा। वो अच्छे से अच्छे विचार रखें, अच्छा से अच्छी सोच रखें, अच्छा से अच्छा काम करें, अच्छा देखें, सबके प्रति अच्छा सोचें।
2: तो आपको किसमें क्या बात अच्छी लगती है, आपके दोस्त परिवार नाते रिश्तेदार या आप जहाँ कहीं भी एक कोई अनजान भी यदि आपको मिल जाता है तो उसमें आपको कभी कोई अच्छाई दिखाई दी हो तो एक आध उदाहरण या कोई इंसिडेंट हमें बताइए।
3: हम तो सब जितना बनता अच्छा करते। हमारे पिताजी ने एक अच्छा काम किया, देश हित के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़के महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेल गए।

0: अच्छा,
1: फ्रीडम फाइटर थे हमारे पिताजी, 13 मार्च सजा काटी ने आजादी में।
0: क्या नाम था आपके पिताजी का? हम
1: पूरन चंद जंग
0: जी
1: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दमोह।
0: सादर नमस्कार है हमारा आपके पिताजी के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए, क्या कहाँ बात कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी
1: दमो
0: बता
1: दमो जिला
0: जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।
2: नजर

0: हेलो, नमस्ते जी। कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैम, मैं पिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से। जी
0: अरे पिंकी जी, रायबरेली से बहुत दूर से बात कर रहे हैं।
1: जी आज मैं आपके कार्यक्रम से फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ मैम। मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर से सुनते हैं।
0: अच्छा, अच्छी तरह से सुनाई
1: वहाँ
0: देता
1: से
0: है।
1: कनेक्ट करके सुनाते हैं ना मैम, सुनते हैं हम।

0: जी।
1: आज मैं आपके कार्यक्रम में पहली बार जुड़ी हूँ।
0: अच्छा, आप कार्यक्रम इतने समय से सुन रहे हैं तो आज पहली बार क्यों लगाया आपने फोन? पहले क्यों ट्राई नहीं
1: जी
0: किया?
1: मैम, पहले मुझे नॉलेज नहीं था, तो मुझे किसी ने जानकारी दी, मैंने
0: हाँ
1: मतलब कार्यक्रम के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे नंबर भी दिया और बोला कि कॉल ट्राई करना। तो कल से ट्राई कर रही थी, कल भी मिल गई थी, तो कल नहीं कॉल रिसीव हुई, आज हो गई। जी,
0: आज होगी। चलिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि पहली बार
1: और
0: आपका
1: मैम
0: फोन
1: मैं
0: लगाए।
1: आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है।
0: जी, तो हम बता दें, हम प्रियंका बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी, और मैम मुझे ना आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने ये सब मतलब जो बोलना और ये मतलब सब एक मतलब रेडियो से मैंने सीखा है मैम, आप लोगों को सुन सुन के। और
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: मैम कैसी हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं। और आपने जो ये बात कही ना कि हमने रेडियो से सुन सुन के बोलना सीखा है या बोलने का तरीका सीखा है, तो ये एक अच्छी बात आपने हमसे और रेडियो से सीखी है। तो पिंकी जी, आज हमारा विषय भी ऐसा ही कुछ है, तो बताइए, जित देखूँ
1: जी
0: तित भल, तो इस बारे में
1: बिल्कुल
0: आप क्या
1: मैम। और मैम,
0: कहेंगे?
1: रेडियो के माध्यम से ये मोहब्बत ही ऐसी है कि सभी श्रोता इतनी दूर होते हैं, फिर भी रेडियो के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो लेकिन यही बात, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जित देखूं तित भला, यानी आकाशवाणी रेडियो जो है वो हर तरफ अच्छाई
1: जी
0: और भलाई का काम कर
1: बिल्कुल
0: रहा
1: मैम,
0: है।
1: बिल्कुल मैम।
0: अच्छा पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। और अब एक सप्ताह बाद आप फिर से ट्राई कीजिएगा, है ना, और
1: ठीक है
0: हमसे बात
1: मैम,
0: कीजिएगा।
1: बिल्कुल मैम, मुझे आपके यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, और मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैम आप लोगों से मेरी बात हो, आज हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: जी, तो ऐसी ही
1: और
0: अच्छी
1: मैम मेरे
0: लगने वाली,
1: दोस्त भी आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, मैम उनका नाम क्या ले सकते हैं आपके
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम
0: दो
1: में?
0: तीन दोस्तों का नाम लीजिए और उन्हें भी ये जानकारी दीजिए, जैसे आपको कहीं से जानकारी मिली है फोन लगाकर
1: जी
0: बात
1: मैम,
0: करने
1: मुझे
0: की।
1: और मेरी दोस्त हैं गुंजन तिवारी, और मेरी सिस्टर है रिंकी, और मेरे भाई है दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही। श्रोता
0: अच्छा
1: शिकायत भी करते रहते हैं कि मेरी कॉल नहीं लगती, कॉल नहीं। मैम जब प्रयास करेंगे तभी तो हमारी कॉल लगेगी, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, बस सोचते रहेंगे कि हमारी कॉल नहीं लगेगी, तो मैम कैसे लग जाएगी?
0: बिल्कुल, लेकिन वो श्रोता भी प्रयास करते होंगे तभी तो शिकायत कर रहे हैं ना, बिना प्रयास के
1: नहीं
0: तो कोई
1: मैम, मैं
0: शिकायत
1: बहुत
0: नहीं
1: सारे
0: करेगा।
1: चैनल से सुनती हूँ मैम, देखिए मैम बहुत सारे श्रोता हैं जो एक साथ कॉल लगाते हैं, तो किसी की कनेक्ट हो पाती, किसी की नहीं हो पाती, लेकिन
0: जी
1: कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना हौसला ऐसा रखे कि कभी हिम्मत ना हारे, टूटने भी लगे तो अपने हौसलों को बुलंद करे, एक ना एक दिन आपकी कॉल जरूर लगेगी।
0: अरे वाह पिंकी जी, बातों ही बातों में आपने तो कितनी सारी बातें कह दी जित देखूं तित भला के बारे में।
1: जी बिल्कुल
0: चलिए,
1: मैम,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे और भी श्रोता इंतजार कर रहे हैं आपसे, काफी
1: जी
0: लंबी बात
1: बिल्कुल
0: हो
1: मैम,
0: गई है।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार जी।
0: कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम और जगह का नाम बताइए।
1: मैं मनीष कुमार बोल रहा हूँ, आगरा।
0: स्वागत है आपका। मनीष जी, आज हमारा कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, यानी हम एक विषय आपको देते हैं एक, और उस पर आप अपने विचार हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि हम जान सके कि उस विषय पर आप क्या सोचते हैं। जी, हमारा विषय हम बता रहे हैं, बिल्कुल बातचीत तो अभी शुरू हुई है। हमारा विषय है जित देखू तित भला।
1: जैसे दूसरी तरफ देखो तो एक दूसरे को मतलब को अच्छा लगना चाहिए पहली बात से, और उसकी बुराई मत करो,
0: जी
1: यही है दूसरे का रवैया।
0: जी लेकिन आप दूसरों में कोई अच्छा गुण कैसे देखते हैं? कौन सा गुण ऐसा है जो आपने किसी दूसरे से अपनाया हो, कोई अच्छा गुण?
1: गुण की तो उससे जन्म मालूम पड़ती है, उसके उसके दोनों के तालमेल मिलते हैं, वातावरण से अच्छे गुणों की मालूम पड़ती है।
0: आपने कोई बात अच्छी किसी से सीखी है, हमें बताएंगे आप?
1: अच्छी तो ये मतलब किसी से बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो, बोलाओ
0: ये तो एक विचार है ना,
1: यानी तो।
0: जो हमारे अपने होते हैं कि भाई किसी का बुरा मत करें, है ना, करें हम। और लेकिन ये होता है ना कि जैसे किसी में कोई गुण होता है कि वो बहुत सलीके से रहता है, कोई सलीके से बोलता है, तो क्या उसकी वो बात वैसी बात आप अपनाते हैं या नहीं?
1: बनाते हैं मानव लाख होते बाद वो मान भी जाते।
0: चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्ते
1: हेलो,
0: नमस्ते
1: नमस्ते जी।
0: जी। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। स्वागत है आपका।
1: मैं ग्राम अध्यक्ष गोला कुमार थाना सोना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना वीडियो तो दीपक कुमार नाम से बात कर रहा दीदी।
0: अच्छा दी, दीपक जी, अचानक आपकी आवाज़ थोड़ी कुछ ऐसी आने लगी कि जैसे कहीं नेटवर्क की दिक्कत हो।
1: जी, हमारे यहाँ जियो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है।
0: हाँ, चलिए ठीक है, आपसे बातचीत हमारी हो पा रही है, बहुत अच्छी तरह तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे, आज विषय है, बात आपकी, गीत हमारे प्रोग्राम है, यानी लोगों में अच्छी बातें और सकारात्मक रवैया को लेकर आप क्या सोचते हैं।
1: जी देखो, ऐसा है कि हम हैं तो हम भले हैं तो सब अच्छे, जैसे आप लोग अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। कहने लगते कि आप भले तो जग भला।
0: जी
1: व्यक्ति अगर व्यक्ति स्वयं के लिए सोचे, अगर आपके प्रति अगर जो व्यक्ति स्वयं के लिए देखे कि हम अगर किसी के सामने एक अंगुली बताते हैं कि आप में एक कमी है, तो तीन अंगुली अपनी ही कमी बताती है। पहले तो आदमी को अपनी कमी देखना चाहिए, किसी दूसरे की कमी बताना चाहिए।
0: जी
1: जी, अपन सारे से किसी को एक उंगली बता दे, तीन उंगली गलत का इशारा आप सबको ही देती है। हाँ, इसलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी की भलाई करना चाहिए।
0: भलाई करना चाहिए और भलाई सब में देखना भी चाहिए।
1: जी
0: जी, धन्यवाद दीपक जी आपका, नमस्कार।
1: जी दीदी, और हमारी एक आपसे शिकायत है।
0: जी बिल्कुल कीजिए।
1: कुछ श्रोता कहने लगते हैं कि हमारी कॉल नहीं निकल रही है, तो आपसे आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना कॉल रिकॉर्ड किया जाए, जितना आप निकाल सको, एक्स्ट्रा कॉलिंग रिकॉर्ड हो जाती है।
0: हाँ।
1: कुछ श्रोताओं की शिकायत रहती है हमारी कॉल शामिल नहीं हुई है, वो कार्यक्रम का इंतजार करती रहती है, कॉल भी उसकी रिकॉर्ड हो जाती है, फिर भी परेशान नहीं हो पाता है समय के अभाव से।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने, समय के अभाव के कारण हमारे वो श्रोता रह जाते हैं कई बार, क्योंकि जिनके कॉल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं।

0: भी है कि कई बार हम सीमित कॉल ले लेते हैं, लेकिन कई श्रोता के ऐसे रहते हैं कि नेटवर्क की दिक्कत रहती है, कहीं कोई श्रोता अच्छी तरह बात नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, तो फिर हमें उनके कॉल हटा देने पड़ते हैं, इसलिए भी हम एक्स्ट्रा कॉल रिकॉर्ड करते हैं, है
1: जी
0: ना? तो दोनों ही तरह से सोचा जाए तो आपकी भी बात सही है, और क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि श्रोताओं के फोन कॉल भी लिए जाए, उन्हें अच्छी क्वालिटी मिले सुनने के लिए, हम इस पर भी ध्यान देते हैं, और उनकी जो फरमाइश है वो भी वो पूरी सुन सके, इस पर भी हमें सोचना पड़ता है
1: एक
0: ना?
1: सुझाव और है हमारा
0: बिल्कुल।
1: कि जो आप विषय रखती हैं कार्यक्रम में, तो विषय अगर कार्यक्रम के अंत में एक दिन पहले के कार्यक्रम में बता दिया जाए, जैसे कल का विषय है जो आज के कार्यक्रम में बता दिया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी, आपका ये सुझाव बहुत ही सराहनीय है, हम इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे आपके।
1: इसलिए कि हम लोग जो आप विषय रखती हैं तो तुरंत की तुरंत उससे जल्दी बात सोचने समझने में दिक्कत आ जाती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इसलिए पहले
0: बिल्कुल
1: से सोच कर लेंगे।
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही कि हर व्यक्ति तुरंत बोल पाने में सक्षम नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है, तो एक दिन पहले वो उस विषय पर सोच ले और अगले दिन फिर बात कर सकता है।
1: क्योंकि हम लोगों का कॉल लग जाता है तो बहुत खुशी हो जाती है, तो फिर विषय में दिक्कत आ जाती है बोलने में।
0: बिल्कुल, ये बात आप हम मानते हैं और हम ऊपर के अधिकारियों तक आपकी ये बात अवश्य पहुंचाएंगे, तो हो सकता है आने वाले जो भी फोन कॉल्स रिकॉर्ड्स होंगे या प्रोग्राम रिकॉर्ड होंगे तो आप उसमें सुनिएगा, अगले दिन का विषय सुन सकते हैं, यदि हमें इजाज़त मिली, अनुमति मिली तो अवश्य इस बात को हम प्रसारित करेंगे।
1: जी, हमारी बात किससे हो रही है? आपका शुभनाम?
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ।
1: जी दीदी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपके सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं,
0: जी,
1: तो
0: हमें भी
1: फिलहाल
0: आपसे
1: मैं
0: बात
1: जी
0: करके अच्छा लगा, आपने शिकायत भी बहुत अच्छी की, तो उम्मीद करते हैं उसका समाधान भी आपको मिला होगा और आपने जो सुझाव दिया वो भी हमें अच्छा लगा, तो हम प्रयास करेंगे कि हम आपके उस सुझाव पर विचार करें और उस पर अमल करें।
1: दीदी,
0: जी, धन्यवाद दीपक जी,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका, लेकिन हम आपका नाम जानना चाहेंगे, तभी तो स्वागत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: प्रदीप कुमार है जी,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं प्रदीप जी?
1: नई कॉलेज बसीनाबाव जिला धौलपुर राजस्थान से।
0: ये कहाँ पर है दलबरा?
1: ये बसीनाबाव धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है जी।
0: अच्छा, चलिए
1: हाँ जी,
0: बढ़िया। तो क्या करते हैं आप?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा, तो आप कार्यक्रम सुनते हैं? आप
1: बिल्कुल, मोबाइल पर सुनते हैं।
0: मोबाइल पे सुनते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात आपकी, गीत हमारे, हम एक विषय दे रहे हैं, आप क्या उस पर बोल सकते हैं?
1: बिल्कुल, बोला है। मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, इनका नाम 92 से मैं जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी से।
0: जी। आज हमारा विषय है जित देखू तित भला, यानी हम जो भी, जिन भी लोगों से मिलते हैं उनमें हमें अच्छा दिखाई देता है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: अच्छा, भलाई मतलब जैसे किसी की तो एक तो बुराई नहीं होनी चाहिए,
0: जी,
1: और
0: लेकिन बुराई
1: दूसरे
0: तो होती ही
1: मतलब
0: है ना, हर सभी में होती है बुराई, तो सभी में होती है और अच्छाई भी होती है, लेकिन हमें
1: अच्छा ही होना
0: देख,
1: चाहिए, सबसे सबसे
0: हाँ,
1: ज्यादा अच्छा ही होना चाहिए।
0: अच्छा ही होनी चाहिए। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा अच्छाई देखने का नजरिया रखते हैं, कैसे रखते हैं, और क्या उनकी कौन सी बात आपने किसी दूसरे से अपने जीवन में अमल में लाई हो?
1: भलाई ना आवे उसपे, तो उसकी दूसरे की मतलब बुराई भी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो एक ये है हमारी।
0: बराबर, ये एक अच्छाई वाली बात आपने कही कि लोगों से ये अच्छाई लेनी चाहिए कि हम किसी की बुराई ना करें।
1: दूसरे बुजुर्गों की उनकी कोई अच्छी बात बताए तो उसके दिमाग में रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और
1: और जैसे मतलब कोई राम आड़े है वैसी है, उसकी बातें बताते हैं तो उसकी भी बतानी चाहिए। दूसरा पूछता है तो मतलब क्या सीख क्या उसमें से तुम,
0: बिल्कुल,
1: ये बात
0: जैसे कि
1: तो।
0: हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जब स्कूल से बच्चे घर आते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि आज क्या सीखा है स्कूल में,
1: सही
0: अच्छी
1: बात
0: ही
1: है,
0: बात सीख कर आते हैं बच्चे, पढ़ाई से संबंधित बात सीख कर आते हैं। तो ऐसे ही हम आम जन जीवन में जो है इस तरह की बात को हमें देखना चाहिए कि हम जहाँ सीखें अच्छा सीखें।
1: अच्छा ठीक है, सही बात
0: जी
1: है जी, सबसे ज्यादा तो कम ही यही है।
0: बिल्कुल। तो प्रदीप कुमार जी, धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते, मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से। हाँ,
0: गोंडा।
1: यूपी।
0: अच्छा जी, क्या नाम बताया, एक बार फिर से बताइए।
1: अनु पांडे
0: अनु जी।
1: जी मैम, आज मेरी फर्स्ट बार कॉल लगी है और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और पहली बार फोन किया उन्होंने और उनका फोन लगा।
1: हाँ, अब मुझे आपसे जोड़ा है पूनम जी ने, जो कानपुर की है, और मैं आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी।
0: जी
1: आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, मेरी तन्हाइयों का सहारा दिया है, मेरी किस्मत भी मुझसे नाज करती होगी, क्योंकि ऊपर वाले ने दोस्त भी मुझको इतना प्यारा दिया है आप जैसा।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और जब हमारे दोस्त इतने अच्छे हैं तो हम तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि आपसे ही तो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, जो हमारा आज का विषय है कि जित देखू तित भला। हम दूसरे में कोई अच्छी बात देखते हैं, सीखते हैं, उनसे अपने जीवन में अपनाते हैं। तो इस
1: मैम
0: बारे में आप क्या

0: महंगे। अच्छा जी, तो ये जो आपने बात कही कि हम जैसे प्यारे दोस्त आपके जीवन में हैं, तो आप जैसे प्यारे श्रोता हैं, तभी तो हम भी इतने अच्छे हैं। आपसे बात करके ही हम सीखते हैं अच्छी बातें।
1: ना, हम लोग आपसे सीखते हैं, आप लोग कुछ बहुत थोड़ा बहुत मुझसे सीखते होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है हम लोग ज्यादा आप ही से सीखते हैं।
0: अच्छा, और हमें लगता है कि हमारे पास श्रोताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रोताओं से सीखते हैं।
1: जी मैम,
0: जी, तब ये बताइए कि आप अपने आसपास के वातावरण में और अपने आसपास मिलने जुलने वाले लोगों से क्या अच्छी बात सीखते हैं?
1: मैं मेरे आसपास सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी बात है कि अपनापन बहुत है, और मेरे आसपास कोई भी बात करता है तो तेरा मेरा करके बात नहीं करेगा, अपना करके बात करेगा, कि जैसे लगेगा सब अपना ही है, और एक दूसरे का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझको।
0: बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज आप दूसरों से सीखते हैं।
1: हाँ
0: जी, बहुत अच्छी बात है अनु जी, और हमें इसी तरह आप फोन करते रहिए, अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहिए, हमारे श्रोताओं को भी अवगत कराइए, और हमारे श्रोताओं की और भी संख्या आपके माध्यम से बढ़े, ये हम उम्मीद करते हैं।
1: जी मैम, हम संख्या भी बढ़ाएंगे, जब मुझको सफलता मिल गई है, आज मेरी कॉल लग गई, बात हो रही है, तो हम और लोगों को भी जोड़ेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि अपनी खुशी तो हम सभी को बताते हैं ना। आज आप कितने दोस्तों से कहेंगे कि आज हमारा फोन कॉल लगा, है ना?
1: हाँ, बहुत
0: जी
1: सारे लोगों से बताऊंगी ना, आज मेरी पहली बार कॉल लगी, वैसे तो मैं आकाशवाणी पे FM पे बहुत सारी जगह कॉल लगाती हूँ, पर आपकी आज मेरी पहली कॉल है, मेरी पहली बार लगी है।
0: जी। तो अनु जी, बस इसी तरह हमें फोन करते रहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आज आपका फोन कॉल लगा है तो आप अगला कॉल अब एक हफ्ते के बाद लगाइए, ताकि हमारे दूसरे श्रोताओं को भी अवसर
1: जी
0: मिले।
1: मैम,
0: जी,
1: जी मैम, मैं
0: नमस्ते।
1: इस चीज का हमेशा ध्यान रखती हूँ, मैं कहीं भी कॉल लगाती हूँ तो हफ्ते 10 दिन का गैप कर ही देती हूँ, वहाँ रूल है, हफ्ते 10 दिन के गैप का तो भी नहीं है तो भी, क्योंकि इससे ये अच्छा लगता है कि अलग अलग, मतलब और भी ज्यादा लिसनर को जुड़ने का मौका मिलता है, और नए नए लोग आते हैं तो नई नई बातें जानने का मौका मिलता है, उनके आसपास के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो काफी अच्छा लगता है, और
0: बिल्कुल
1: जब हर बार हम ही कॉल करेंगे, हम ही बात करेंगे, तो फिर नई नई बातें कहाँ से जानेंगे और हमारे दोस्तों की संख्या कहाँ से बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अनु जी आपने। मतलब ये तो बिल्कुल सटीक बात है। आज हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है, बात आपकी गीत हमारे का, उससे संबंधित आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये हमारे लिए और हमारे
1: अरे
0: और
1: बहुत
0: श्रोताओं के लिए
1: जी
0: भी।
1: मैम,
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क को माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास कल भारत के वाणिज्यिक जहाज सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद मंत्रालय ने अमेरिका के विदेश मामलों के प्रभारी जेसन मीक्स को तलब किया है। जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 लापता हैं। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-6112 का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से प्रदेश की महिलाएं अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव दर्ज कर सकेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। शब्द रचना है समीर की और गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं एक गीत पसंद करना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले ने लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली फरमाइश जिसे हमने लिया है फिल्म सड़क से स्वर हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू के ये शब्द रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है समीर और सुरेंद्र साथियों का तो इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभिनंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित और मोहित ने इसी गीत को सुनना चाहा है बिहार कॉलोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी प्रकाश वीर राजपूत डोडी लाहौरा बलोद से कमलेश जयपुरिया ने टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला प्रदीप ने

फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से। स्वर है साधना सरगम की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, सादिक भाई और शाहिद भाई। इसी गीत को सुनना चाहे मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल धर्मपाल, वीर सिंगलाटी, लखविंद सिंह और महावीर संधु, गुरचरण और रमेश मिगलानी ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म रहना है तेरे दिल में, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहें यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने।

0: थे सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार का छठवां भाग।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के

कर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, शिबू यशवंत के साथ घर लौटता है। यशवंत नारायणी को शिबू के टीबी होने की बात बताता है तो वो दुखी होती है। गेहूं के खेत में मजदूरों की सभा को शास्त्री जी संबोधित करते हैं और हड़ताल का आह्वान करते हैं। गांव के किसान भी मजदूरों का साथ देते हैं। कंपनी की शह पर सभा को सफल होने नहीं दिया जाता। यशवंत बलबीर स्वामी के साथ शास्त्री जी से मिलने जाता है। अगले दिन दलित मजदूरों की सभा करने का फैसला होता है। यशवंत नारायणी को हड़ताल का विरोध न करने के लिए समझाता है। बसुमती का लड़का नौकरी से निकाले जाने के बाद साई नदी के पास बनी दलित बस्ती में अपनी अम्मा से मिलने अपनी लड़की पार्वती के साथ आता है। भृगु यहीं पर रहकर मजदूरी करना चाहता है। अपनी अम्मा के मुंह से हड़ताल की बात सुनकर वो चौंकता है। अब आ

0: मजदूर साथियों, हम लोग शांति से हड़ताल करेंगे, क्या आप लोग तैयार हैं?
1: मजदूर एकता
2: जिंदाबाद।
0: हमारा सच्चा उद्देश्य तभी सफल होगा जब सबके पास आत्मत्याग की भावना होगी। हड़ताल की सफलता में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। साई की ये बहती धारा मेरी बात की मूक गवाह है। आप सभी को यूनियन का तन मन धन से साथ देना होगा। बोलो, दोगे? हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय, जिला मजिस्ट्रेट तथा चीफ इंजीनियरों को भेजने के लिए नोटिस तैयार किया है। क्या ये आप सब लोग सुनना चाहते हैं? तो सुनिए, रायबरेली जिले के मजदूर सन 1976 के अप्रैल महीने से काम की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अनेक प्रतिनिधियों ने अब तक केंद्र और राज्य के मंत्रियों से बात की है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार भी बदल गई है। नई सरकार से मजदूरों को आशा की नई किरण दिखाई दी है। नई सरकार बनने के बाद हमने 6 महीने इंतजार किया, पूरे 6 महीने। केंद्र के श्रम मंत्री, राज्य मंत्री, आयुक्त, सहकारी केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडलों के सचिव से मिलकर हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बहुत बार बात की। सबके जूते घिस गए। कंपनी के अधिकारियों ने सरप्लस मजदूरों की सूची तैयार की, जिससे दिहाड़ी मजदूरों के सिर पर बिजली गिरी। मौखिक रूप से स्थानीय यूनियन के स्थानीय संचालक का जो भी समझौता हुआ वो टूट गया। संचालक ने विश्वासघात किया। अब कोई उपाय नहीं बचा है, इसलिए मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। यह हड़ताल 20 तारीख से शुरू होगी और उचित व्यवस्था होने तक चलती रहेगी। मेरे साथ बोलिए, मजदूर यूनियन
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: लड़ेंगे,
2: जीतेंगे,
1: लड़ेंगे,
2: जीतेंगे।
0: कल हम 1 हफ्ते का नोटिस देंगे, उसके बाद हम सब लोग इस धर्म युद्ध में कूद पड़ेंगे। मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
1: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
1: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
3: अध्यक्ष महोदय, हमें हड़ताल से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी एक शंका का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।
0: शंका? कैसी शंका? साफ साफ कहो।
3: हड़ताल के नतीजे के बारे में हमें अभी कोई स्पष्ट गारंटी नहीं मिली है।
0: क्या गारंटी चाहते हो?
3: महोदय, हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। हम लोगों को पेट पर गांठ बांधनी पड़ेगी। हमारे बच्चे भूखे भी मर सकते हैं। बोलो, क्या गारंटी दोगे?
1: हाँ, बोलो बोलो,
3: गारंटी दोगे?
1: बोलो।
0: किसने कहा कि हम लोग गारंटी नहीं दे सकते? हम गारंटी देंगे और जरूर देंगे। हर तरफ से पैसों का बहाव आएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। साई की धारा महानदी बनेगी।
3: ठीक है महोदय, हम लोग तुम्हारे आश्वासन पर हड़ताल शुरू करेंगे, लेकिन हड़ताल

0: नतीजा कुछ बुरा हुआ
1: तो क्या होगा तब?
0: तो हम लोग तुम्हें और दूसरे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।

कितनी अभागी है नारायणी, जिस उम्र में उसे सुख भोगना चाहिए उस उम्र में बेचारी दिन रात मजदूरी में खटती रहती है। पति टीबी का मरीज है, उसकी सेवा अलग करनी पड़ती है। एक नन्ना बच्चा जिसके मुंह से अभी मां का दूध भी नहीं छूटा है, उसकी परवरिश किस तरह कर पाती होगी बेचारी। शायद उसकी किस्मत ही फूटी थी जो बीमार पति उसके पल्ले पड़ा। किसी दूसरे घर जाती तो उसका पति अपनी अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। लेकिन मैं क्यों सोच रहा हूं ये सब? नहीं नहीं, मुझे पर स्त्री के विषय में सोचने का भला क्या अधिकार? कहीं मैं उसकी ओर आकर्षित तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुझे अपने आप को भटकने से रोकना होगा। इंसानियत के नाते भले ही मैं उसकी मदद कर दूं, बस इससे अधिक उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है।

0: अरे यशवंत,
1: हम तुझे कहाँ कहाँ खोजते फिर रहे हैं।
2: काकी, तुम मुझसे कोई काम है?
1: हाँ। अच्छा ये बता, हड़ताल होने का फैसला हो गया है क्या?
2: हाँ काकी, अब तो नोटिस भी दिया जा चुका है, हड़ताल तो होकर ही रहेगी।
1: अरे तुझसे हमको ऐसी आशा नहीं थी। अरे तू भी नेताओं के चक्कर में पड़ गया लगता है।
2: काकी, ये हड़ताल हमारे हक की रक्षा के लिए हो रही है।
1: कैसा हक है, कैसा हक यशवंत? अरे हड़ताल हुई तो चारों ओर भूख नाचेगी, भूख, खून खराबा, लाश, चील, गिद्ध, हिंसा ही हिंसा। हे गांधी भगवान, इस नादान को क्षमा कर, क्षमा कर इसे। तू
2: चली गई काकी भी ना, बस
3: हाँ शिबू, तबीयत कैसी है भाई?
4: अरे लेचू भैया, अब तो काफी आराम है। वैसे लेचू भैया, इस कंपनी में और दलित मजदूरों की बस्ती में हम दोनों एक जैसे ही हैं।
3: है? मतलब?
4: मतलब के दोनों अपंग। मैं टीबी का मरीज, ये हड्डियां निकला शरीर।
3: हाँ भाई शिबू, मैं भी अपंग, मेरा एक पैर खराब है, लेकिन हम दोनों पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ। तुम भी भले चंगे थे, हाथ पैरों में जान थी, खूब मेहनत करते थे तुम।
4: अरे जो मेरा हाल है सो तुम्हारा, तुमको जन्म से तो अपंग नहीं थे ना?
3: हाँ हाँ।
4: कंपनी के काम करते हुए ही तुम्हारी ये टांग कटी।
3: हाँ भैया, सुना है शिबू, सरकार अपने कर्मचारियों को इलाज का रुपया देती है और हमें कंपनी गालियां देती है। अरे इलाज तो दूर, नौकरी से निकाल देती
4: है। अरे लीचू भैया, ये देश हमारा है और हम सब इस देश के रहने वाले हैं, आजाद हैं। अरे वो भी काम करते हैं और हम भी भरपूर मेहनत करते हैं, पर लीचू भैया फिर अलग अलग कानून क्यों है? ये कौन सा न्याय है भैया?
3: अरे शिबू, पढ़े लिखे बताते हैं कि कानून की नजर में तो सभी बराबर हैं, लेकिन अफसर की टेढ़ी नजर है। बराबरी कागजों में बंद है और उसी के साथ बंद

0: है हमारी किस्मत, ये लीडर लोग हम गरीबों को बहका फुसला कर हड़ताल कराते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं और कुछ नहीं बस।
1: हाँ भैया, देखो तो भला, दुहाई देते हैं गरीबों की, बात करेंगे गरीबों की, उनकी भलाई की, और भलाई की मलाई चट कर जाएंगे ये लीडर लोग खुद।
0: अरे शिबू, शिबू, शिबू, आज तक किसी लीडर को पिटते देखा है? किसी लीडर को मार खाते देखा है? किसी लीडर को गरीब देखा है? किसी लीडर को मेहनत करते देखा है? किसी लीडर के बच्चे भूखे सोते हुए देखे हैं तू नहीं?
1: अरे नहीं नहीं नहीं लीचू भैया, काम धाम कोई नहीं, बस ऐश आराम भरपूर, यही तो है लीडर का मतलब।
0: भैया अपनी अपनी किस्मत है और क्या,
1: क्या करें लीचू भैया, क्या करें, हम लोग तो सिर्फ बातें करके रह जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते कुछ, नहीं तो हालात बदल सकते हैं।
0: अरे भैया, जब मैं साहब लोगों के घरों में सफाई का काम करता था ना, तो कान उनकी बातें सुनने में लगे रहते थे। शिवू भैया, मैंने अपने इन्हीं कानों से सुनी है दूसरे देशों की बातें।
1: अच्छा लीचू भैया, कुछ कुछ हमें भी तो बताओ। देखो लीचू भैया, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कुछ ही तुम बता दोगे।
0: शिवू शिवू, बड़े लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, गरीब इसलिए गरीब रह जाता है कि वो पढ़ता लिखता नहीं है।
1: हाँ लीचू भैया, ये बात तो सच है। अब हाथ कंगन को आरती क्या, वो अपने यशवंत भैया को ही देख लो ना, पढ़ लिख गया तो यूनियन कमेटी में बैठ गया।
0: अरे सुनो सुनो शिबू, मैंने सुना है कि दूर देशों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा बिल्कुल नहीं है। हाँ? और सभी को खाने के लायक तो मिल ही जाता है।
1: अच्छा लीचू भैया, अब इसे भाग्य कहें, कर्म गति कहें, अनपढ़ता कहें, क्या कहें?
0: अरे नहीं शिबू,
1: देखो लीचू भैया, हम तो हालात से समझौता करके संतोष कर लेते हैं
0: बस,
1: लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते ना।
0: इसी बात का तो रोना है।
1: देखो लीचू भैया, मैं तो बस यही सोचता हूँ कि बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा उसे, लेकिन अभी तो हालात पेट भरने लायक भी नहीं है, कैसे पढ़ाऊंगा उसे? लगता नहीं मैं अपनी उम्र में बेटे को पढ़ता लिखता देख पाऊंगा।
0: अरे शिबू शिबू शिबू, घबराओ नहीं भैया, और सुनो, साहिब लोग कहते हैं कि दूर देशों में गरीब भूखे नंगे क्रांति कर देते हैं, और हमारे देश में भूखे नंगों के कारण क्रांति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं।
1: लीचू भैया, बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है, अरे अपनी समझ के ऊपर है।
0: हाँ ऊपर ही है।
1: देखो भैया, हम तो विवश है, हमारे भाग्य में लिखा है कि हम अपनी आंखों के सामने अपनी बहू बेटी की इज्जत लूट के देखते रहे।
0: चुप कर,
1: कानून साहब बहादुर की तरफदारी करता रहे, गरीब की कौन सुनता है, कौन सुनता है?
0: बस कर शिवू, बस कर, तू आराम कर, मैं चलता हूँ, टाइम पास करने के लिए इधर उधर भटकूंगा बस, और कुछ भी नहीं। भगवान ने ये टाइम की कैसी विचित्र बला बनाई है, तू आराम कर, बहुत थक गया है।
1: थक तो गया हूँ, लेकिन लीचू भैया आते रहना। अरे सुख दुख में तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे।
0: अरे ऐसा क्यों कहता है शिवू शिवू, आराम से, हमें एक दूसरे का ही तो सहारा है।
1: अरे चुप हो
0: गए, तू आराम कर।
2: कहाँ जा रही हो नारायणी?
3: अरे आप यशवंत बाबू? कहाँ जाऊंगी मैं, पर आप कहाँ जा रहे हैं?
2: सच बताऊं नारायणी, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। माँ विंध्या वासिनी से तुम्हारे पति के ठीक होने की प्रार्थना करके।
3: यशवंत बाबू, मेरे लिए आप कितनी चिंता करते हैं ना।
2: मुझे अच्छा लगता है नारायणी।
3: यशवंत बाबू,
2: हाँ?
3: सुना है कंपनी वाले रंगपुर से नए लोगों को लाए हैं मिट्टी काटने वाले काम के लिए।
2: हाँ, सुना तो मैंने भी है नारायणी, शायद नहीं भी, लेकिन ये बात सच्ची समझो तुम।
3: मतलब कि कंपनी वाले ये बताना चाहते हैं कि हम पर हड़ताल का कोई असर नहीं होगा, हम हड़ताल वालों की परवाह नहीं करते। यशवंत बाबू,
2: हाँ?
3: मेरा तो कलेजा धक धक करता रहता है, पता नहीं क्या होगा।
2: देख नारायणी, हड़ताल वाली बात हमारे किसी के हाथ में नहीं है। ये ऊपर वाले लीडर अपनी हेखड़ी चलाने के लिए गरीब मजदूरों को बलि का बकरा बनाते रहते हैं। अरे ये तो उनका खेल है, कोई मरे कोई जिए इन पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी तकलीफों के नाम पर इनकी दुकानें चलती रहती हैं। अरे ये भी व्यापारी हैं, बड़े सौदागर।
3: ये बात आप कह रहे हैं यशवंत बाबू, आप भी तो।
2: वो क्या है ना नारायणी कि अब मैं भीतर की बातें भी जानने लगा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। अरे हम गरीबों की किस्मत तो गाय बैलों की तरह है, जो मालिक बनता है अपने किस्म से हाँकता रहता। अरे ये
3: आपका रुमाल गिर गया, हाँ। मैं उठाई देती हूँ।
2: हाँ।
3: ये लो।
2: अरे नारायणी, तुझे तो बुखार है,
3: वो
2: तेरा बदन तो गर्म हो रहा है। चल घर चल, आराम कर, मैं दवाई लेकर आता हूँ।
3: बाबू, इतना बुखार तो रोज ही चढ़ा रहता है।
2: फिर भी तू काम पर जाती है?
3: काम पर नहीं जाऊंगी तो पेट कैसे भरेगा, मेरा काम ही मेरा आराम है। बाबू, ये इस तरह मेरी तरफ टकटकी लगाए क्या देख रहे हो?
2: कुछ भी नहीं नारायणी।
3: तो मेरा मेरा हाथ तो छोड़िए ना। कब से मेरा हाथ पकड़े हुए हैं आप? डॉक्टर भी तो ऐसी नब्ज पकड़ कर रोग पहचानता है। आप डॉक्टर लगते हैं
2: है? क्या? हाँ नहीं, अब पता नहीं कैसे नारायणी, मैं बहुत देर से तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। अब लो छोड़ दिया, अच्छा अब चलता हूँ।
3: अच्छा हुआ बाबू कि अभी किसी ने देखा नहीं।
2: हाँ।
3: नहीं तो पूरी लाइन में ही क्या, पूरी कंपनी में हल्ला हो जाता।
2: हाँ हाँ वो ठीक है। अच्छा एक बात बता नारायणी।
3: क्या?
2: तेरे पति कैसे हैं?
3: ठीक है, ठीक है। आप घर आएंगे उन्हें देखने?
2: हाँ हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना नारायणी।
3: हाँ बाबू, आप भी अपना ध्यान रखना।
4: अरे शिवू, हमारे भूमिहीन लोग जिंदगी भर हार तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन कभी भर पेट खाना नसीब नहीं हुआ। चारे अच्छे दिन आने की आस में टकटकी लगाए इस दुनिया से विदा हो गए, मगर उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ शिवू, कभी पूरा नहीं हुआ।
1: अरे लिचू भैया, वैसा ही सपना ये यूनियन वाले भी हमें दिखा रहे हैं, पर सपना तो सपना ही होता है ना। पर गरीबों के सपने भी कभी पूरे हुए हैं?
4: अरे शिवू, गरीब सपनों में जीता जरूर है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलता हुआ देख नहीं पाता।
1: शिवू आराम से आराम से।
4: अरे शिवू, हमारे समाज की कितनी ही पीढ़ियां इन्हीं सपनों में काल कवलित हो गई हैं।
1: अरे लिचू भैया, यहां से अच्छे दिन तो हमारे चारे खेरा वाले दिन थे, तब नारायणी ठाकुर साहब के यहाँ कपड़े धोने जाया करती थी।

0: खाने पीने की कोई कमी थी नहीं।
1: अरे हाँ शिबू, सुना है ठाकुर साहब मांगने जाने पर मना नहीं करते थे।
0: हाँ ठीक ही सुना है तूने।
1: अच्छा,
0: पर मुझे ठाकुर साहब की एक बात अभी भी याद है।
1: कौन सी बात, कौन सी बात? हाँ,
0: अरे वो चारें खेरा के कंपनी के स्कूल में हमारे दलित लड़कों को बोरी बिछाकर बैठने दिया जाता था।
1: अच्छा?
0: हाँ, वो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर साहब स्कूल पहुंचे। हाँ? और सब बच्चों की बोरियों को इधर उधर कर दिया।
1: अच्छा?
0: हाँ, और तब से दलित बच्चे भी साहब लोगों के बच्चों के साथ बैठने लगे।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं शिव, नहीं मैं नहीं मानता ऐसा हुआ।
0: लिच्चू लिच्चू, तुझे तो ना ना मानने की बीमारी है।
2: अरे नहीं नहीं शिव, नहीं, दलित बच्चे तो अभी भी साहब लोगों के बच्चों के साथ बैठने लायक नहीं हुए। अरे तू बीमार आदमी, कंपनी का स्कूल कभी देखा है तूने?
0: देख लिच्चू, देख देख, तू मुझे ताव ना दिला।
2: अच्छा?
0: अरे मैंने कंपनी का स्कूल नहीं देखा तो क्या हुआ? अरे ये बता, तूने देखा है क्या?
2: हाँ हाँ देखा है, देखा है। अरे जब मैं अपंग नहीं हुआ था और मेरा पैर ठीक था, तब मैं कंपनी के स्कूल में पखाना साफ करने का काम करता था। अपंग होने से पहले मुझे स्कूल और दफ्तर में ड्यूटी मिलती थी, इसीलिए कह रहा हूँ तुझे।
0: मैं जानता हूँ कि तू सच कह रहा है।
2: हाँ।
0: भाई मैं तो साहब लोगों के बच्चों के साथ दलित बच्चों के समान होने का सपना बुन रहा था।
2: अच्छा?
0: मगर लिच्चू भैया, तेरी सच्चाई ने मेरे सपने को तार तार कर दिया।
2: अरे शिबू, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मेरा बेटा जगन्नाथ पढ़े लिखे। अगर वो पढ़े तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी यशवंत जैसा बन जाएगा। अरे कंपनी में मुंशी गिरी करेगा।
0: अरे भैया लिच्चू, तेरी तो वही कहानी है, घर में नहीं दाने
2: क्या है
0: और अम्मा चली भुनाने हैं।
2: ठीक है भैया, छोड़ इस बात को छोड़।
1: सुन सुन शिबू, सुना है बटेली के पास ही मुरादाबाद के सफाई कर्मचारी और दुसाध जाति के लोग मंदिर के आंगन में लंगर खाने बैठने लगे हैं।
0: हो, वो पासी और सफाई कर्मचारी? अरे जानता नहीं तू
2: क्या?
0: सफाई कर्मचारियों के जायसवार, लाठीकर, कुरार, गावाइलिया और फारीकरों के बीच कैसी सरफुटेबल मारपीट हुआ करती थी।
2: अरे उनकी बात छोड़, हमारे माधिया दर्दावा और चिदरूरिया के बीच भी कैसी मारपीट होती थी, तुझे नहीं मालूम?
0: मुझे पता है। अरे लिच्चू, लेकिन अब वो पहले जैसे दिन नहीं रहे। अरे काफी बदलाव आ गया है, क्यों है ना?
2: अरे मेरे साहब के ब्राह्मण मुंशी के घरेलू जमादार लक्ष्मण सिंह की कहानी जरा पुरानी है। सुन सुन सुन, ब्राह्मण मुंशी साफ सफाई पसंद आदमी थे। सफर करते समय कभी कभी सफाई करने के लिए लक्ष्मण सिंह को भी साथ लेकर जाते थे।
0: हाँ लिच्चू, अरे वो दिन ही कुछ और तरह के।
2: ठीक कहा तूने।
1: अरे और जानता है शिबू, लक्ष्मण सिंह बग्घी के कोचवान के पास बैठकर जाता था।
2: एक दिन लक्ष्मण सिंह का कायस्थ के घर निमंत्रण था।
0: अरे लिच्चू भैया, क्या कहता है तू?
2: हाँ?
0: है कायस्थ के घर में लक्ष्मण सिंह का निमंत्रण?
2: अरे हाँ शिबू, हाँ मुंशी के साथ उसे भी बुलाया था।
0: अच्छा?
2: हाँ। अरे और मुंशी के साथ वो साफ सुथरी पगड़ी पहनकर निमंत्रण खाने पहुंचा।
0: अच्छा?
2: किसी मोची से वो चमड़े के जूते भी उधार मांग लाया था।
0: अरे
2: हाँ,
0: चमड़े वाला जूता भी?
2: आप सुन तो, वहाँ एक मजेदार वाकया हुआ। मुंशी के पास लकड़ी की मेज कुर्सी पर कायस्थ परिवार ने उसे बैठाया। अचानक मुंशी और लक्ष्मण सिंह चौंक उठे।
0: है? वो भला क्यों?
2: अरे मुंशी को पीतल की थाली कटोरी में खाना परोसा गया था।
0: है?
2: और लक्ष्मण सिंह को चांदी की थाली कटोरी में। शिबू, चांदी की थाली कटोरी में।
0: अच्छा? पर ये कायस्थ परिवार ने क्या गजब किया?
2: अरे सुन तो सही, चांदी की थाली कटोरी देखकर बेचारा लक्ष्मण सिंह एकदम डर गया। कायस्थ परिवार और मुंशी ने कहा, ए भाई खाओ खाओ, तो उसने डरते डरते खाया।
1: अच्छा।
2: और वापसी में मुंशी ने कहा कि आज तूने पहली बार चांदी की थाली कटोरी में खाना खाया है, क्यों?
1: अच्छा, तो फिर लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा?
2: अरे लक्ष्मण सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु महाराज, ये तो आपकी कृपा है। तब मुंशी ने हंसते हुए कहा कि ये तेरा सम्मान नहीं है बल्कि अपमान है ये।
1: है? हाँ, भला इसमें लक्ष्मण सिंह का क्या अपमान हुआ?
2: अरे वही तो बता रहा हूँ शिभू, यही बात लक्ष्मण सिंह ने भी पूछी। इस पर मुंशी ने कहा कि दलित के स्पर्श से चांदी पवित्र मानी जाने लगती है, तेरे छू लेने से कायस्थ परिवार के चांदी के बर्तन एकदम शुद्ध हो गए हैं।
1: अरे लिचू भैया, आजकल के कायस्थ लोगों ने हम दुसाध लोगों को कौरव महाराज दुर्योधन के भाई दुशासन का वंशज मानना छोड़ दिया है।
2: अरे शिव, आजकल राहु की पूजा करने की सामर्थ हमारे पास कहाँ है? पहले के दिनों में हमारे कन्नौजी, मागधी और सिलहटिया लोगों की राहु पूजा में ब्राह्मण भी आते थे।
1: अरे लिचू भैया, मेरा तो मानना ये है कि
2: क्या मानना है शिव, तेरी खांसी तो बहुत ही जा रही है। शिव शिव शिव, तेरी तबीयत ठीक है? तू लेट जा, थक गया, थक गया, लेट जा, आराम आराम आराम। शिवु शिवु शिवु शिवु शिवु, ले
1: भैया
2: आराम कर।
1: हम तो मरने के बाद ही आराम करूंगा भाई।
2: ऐसा क्यों कहता है शिवु?

0: संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने के साथ ही टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर कहा है कि इस दौरान विकास, सुशासन, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों के सशक्तिकरण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु एनसीटी पाठ्यक्रमों, बीएड, एमपीड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड के लिए महाविद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। प्रथम चरण में 32,918 अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किए गए हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की है। राज्य की महिलाएं अब अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-233-6112 द्वारा संकेत दे सकेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में चक्रवात के 2 अलग-अलग सिस्टम बनने से आज ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 1 सप्ताह में मानसून के सक्रिय होने का अनुमान है। और विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में 48 टीमों द्वारा 104 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम में 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

नमस्कार सखियों, हमारी सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ है नीलम चौरे। सखियों, हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, साथ ही सरकारी योजना, कहानी और फिल्मी गीत भी। लेकिन इससे पहले बात करें आज के खास दिन की, यानी 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हम मना रहे हैं सखियों, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करना। इसलिए जरूरी है सखियों अपने शरीर को चलायमान रखना, और इसके लिए जरूरी है नियमित खेलकूद में भाग लेना। सखियों, खेल जीवन का वह हिस्सा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। खेल मनोरंजन का साधन नहीं सखियों, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। खेलने से शरीर मजबूत, हड्डियां स्वस्थ और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खेलने से हम कई तनावों से दूर रहते हैं। खेल हमें समय प्रबंधन, टीम भावना, धैर्य और आत्मविश्वास भी सिखाते हैं। इतना सब कुछ खेलों से, यही कारण है सखियों कि पिछले 12 वर्षों की विकास यात्रा में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आज खेलो इंडिया जैसी योजनाओं से युवाओं को पहचान और अवसर दिए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें छिपी प्रतिभा देश के सामने आ रही है। पहले जहां खेलों को केवल शौक माना जाता था, वहीं आज इसे करियर और राष्ट्र निर्माण का मजबूत माध्यम माना जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार की नीतियों ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने का अवसर दिया है। इसका असर यह है सखियों कि भारत आज ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स जैसे मंचों पर बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सखियों, एक बात तो है, पहले खिलाड़ी अकेले संघर्ष करते थे, लेकिन आज उनके साथ एक मजबूत सिस्टम और सरकारी सहयोग खड़ा है। सखियों, कहते हैं जैसे एक इमारत अकेले ईंटों से नहीं बनती, बल्कि इसमें सीमेंट, डिजाइन और इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। वैसे ही खिलाड़ियों की सफलता में सरकार की योजनाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं और वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले 12 वर्षों में भारत में खेलों के प्रति दृष्टिकोण बदला है। अब खिलाड़ी केवल भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि पदक जीतने के लिए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की भूमिका इस यात्रा में एक मजबूत आधार की तरह है, जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति देते हैं। इसी जोश के साथ सुनते हैं ये प्यार।

0: सखियों, इसी जोश के साथ हम बात करते हैं, सखियों अब बात करते हैं भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना की, और वो है सुकन्या समृद्धि योजना की, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई, जिसका उद्देश्य बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। इसमें माता पिता अभिभावक अपनी बेटी के नाम से बैंक या डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं। इसमें बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है सखियों, जो बहुत ही कम राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं, ताकि मध्यम वर्गीय परिवार भी आसानी से इसका लाभ उठा सके। इस योजना से सरकार द्वारा अच्छी ब्याज दर भी दी जाती है सखियों, जो पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है सखियों कि इसमें मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। बेटी के बड़े होने पर यह बचत उसकी शिक्षा, करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं, आवश्यक जरूरतों में काम आती है। आप चाहे तो बेटी के 18 वर्ष पूरे होने के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए खाते से कुछ राशि निकाली भी जा सकती है। आज के समय में बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है सखियों। सुकन्या समृद्धि योजना केवल एक बचत नहीं, बल्कि बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को संवारने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए सखियों, छोटी छोटी बचत करके भी आप इस योजना का लाभ लें। यदि आपके पास कोई परिवार जिसको योजना की जानकारी नहीं, तो उन्हें इस योजना की पूरी जानकारी जरूर दें, ताकि अधिक से अधिक बेटियां लाभ के साथ साथ अपने सपनों को पूरा कर सकें। बात सखियों सपनों की हम कर रहे हैं, तो कहानियां सपनों को आकार देने, कल्पना को बढ़ाने और प्रेरणा देने का सबसे अच्छा माध्यम है ना? इसी बात पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मीना गोदरे जी से कहानी बिछोए। तो आइए सुनते हैं कहानी बिछोए।
1: कहानी का शीर्षक है बिछो। वातावरण गर्म हो रहा था, सूरज सर के ऊपर था, उस पर टिश्यू के फूल आग बरसा रहे थे। होली का महीना था, एसी कार सड़क पर सर पर दौड़ रही थी। कार के अंदर शीतलता थी, मैं थी और वो, किंतु वक्त का फेर था। अब अकेले घूमने की कोई चाहत ना थी। लद गए थे वो दिन जब हम अकेले हिल स्टेशन पर घूमने के प्लान बनाते। तब केवल हम दो थे, प्लान बनते रहे, सपने सजते रहे, वक्त पता ही नहीं चला कब हवा की तरह उड़ गया और हमारे भी दो हो गए। हम दो से चार हो गए। अब बच्चों के साथ घूमने के प्लान बनने लगे। बच्चों के स्कूल में दाखिले हो गए, हर महीने टेस्ट, 2 दिन की भी छुट्टी ना ले सकते थे। साल भर की व्यस्तता के बाद गर्मियों में बच्चों की 2 माह की छुट्टी में बच्चों के साथ सपने सजाती, पर रवि कुछ ना कुछ बहाना बना देते, क्योंकि बिजनेस भी वह अकेले ही संभालते थे। बच्चे बड़े होते रहे, साथ ही बढ़ गई हमारी जिम्मेदारियां और बच्चों के करियर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी।

अब केवल एक ही लक्ष्य सामने होता, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में निकलने के लिए हर संभव प्रयास करना। परीक्षा का टेंशन बच्चों से अधिक मुझे होता, सारा ध्यान वही केंद्रित रहता। आना जाना, टीवी देखना सब स्थगित हो गया। आखिर मेहनत रंग लाई, बच्चे मन चाहे करियर बनाने निकल पड़े घर से बाहर। हॉस्टल में बच्चों की परेशानियां देखकर मैं भी चैन से ना रह पाती। पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लग गई, चिंता दूर ही ना हो पाई थी और शादी की बातचीत आने लगी। मेरे सपने पता ही ना चले कब टूट कर बिखर गए। सपने तो अक्सर रेत के घरौंदे होते हैं, बिखरना जिनकी नियति हो सकता है, पर कर्तव्य की मजबूत चट्टान बनाए रखने के लिए बुलंद हौसले और मजबूत इरादे जरूरी हैं। अपने सपनों को पूरा करने से अधिक अहम है उनके सपने पूरे करना जो हमारे विश्वास में पलते हैं। समय से दोनों बच्चों की शादियां कर दी, सपनों ने नया मोड़ ले लिया। अब तीर्थ स्थल जाने का मन बनने लगा, वहां जाना भी आसान लगा पर वह भी ना हो सका। घूमने के सपने ने सबके साथ मिलकर पिकनिक मनाने की चाह का रूप ले लिया, पर किसे वक्त है? लड़का बहू तो स्वयं के लिए वक्त नहीं निकाल पाती, उनसे क्या कहूं। छोटे लड़के के पास पूना गई तो पास ही एक तीर्थ स्थान था, बस 2 घंटे का रास्ता। मेरी बहुत इच्छा थी, सबको लेकर साथ चलने की, घूमने की इच्छा थी और तीर्थ यात्रा भी। 4थी बार प्लान बनाया, अब की बार बहू ने मना किया। बोली, आप और पापा जल्दी तैयार हो जाओ, ड्राइवर बुला दिया है। खाना तो आपने खा ही लिया है, कपड़े भी ठीक ही पहने हैं, वैसे भी वहां कौन मिलने वाला है, जल्दी जाओ। 2 घंटे में आना जाना और 10 मिनट में दर्शन तो हो ही जाएंगे, फिर गाड़ी वापस भी चाहिए है। आज छुट्टी है तो हम लोग जरा शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, क्या तुम लोग हमारे साथ नहीं चलोगे? सकुचाते हुए मैंने बहू से पूछा। अरे मुझे समय कहाँ है, आप देख रही हैं ना, मुझे प्रोजेक्ट बनाने तक का समय नहीं मिल पाता। मन तो किया बहू से कह दूं कि शॉपिंग तो फिर भी हो सकती है, पर बहू का मूड देखकर चुप रहना ही उचित लगा। चुपचाप बेमन से गाड़ी में बैठ गई। यह भी कोई घूमना है, आगे ड्राइवर के साथ रवि और पीछे मैं अकेली अपने सपनों की गठरी पर बैठी सोच रही थी, क्या आज रवि मेरे साथ बैठकर 2 बातें करते सफर नहीं कर सकते थे। ड्राइवर से हंसी मजाक करते रहे, मैं गुमसुम सी खिड़की से पलाश से धधकते अपने सपनों को जलता देख रही थी। जीवन में कितने बसंत के बाद यह बसंत आया था जो 55 की उम्र में भी अपने सपनों को जीवित रखे था। क्या यही सपने थे उसके? साथ मुंह चलाने भी कुछ न था, एक पानी की बोतल मात्र साथ में थी। ना तो मैं कोई साधु महात्मा थी और ना ही बुढ़ापे की शरण में। एक वह दिन था जब घूमने का मतलब खाते पीते मौज मस्ती करते जाना होता था। मंदिर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी, रवि अपने तेज और लंबे कदमों से आगे बढ़ गए। मैं तेजी से उनके पीछे पीछे भागती, फिर भी उनसे 8-10 कदम पीछे ही रह जाती। अच्छा ही हुआ जो कभी घूमने ना जा सकी। मैं तेज नहीं चल सकती तो क्या रवि मेरे साथ नहीं चल सकते थे? लगा कि जब रवि घूमने का मतलब ही नहीं समझते तो उनके साथ किसी भी समय जाना बेमानी ही होता। भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं रिश्तों की मृग पिपासा में चली जा रही हूँ, मुझे ज्ञान दो। तभी कान में रवि का स्वर गूंजा, अब बस भी करो, शेष भक्ति अपने शहर के मंदिर में कर लेना, मुझे जोर की भूख लगी है, कहीं चलकर चाय नाश्ते की व्यवस्था देखते हैं। तुम गाड़ी में बैठो, मैं देखकर आता हूँ। मैं इंतजार करती रही। वह नाश्ता करके लौटे, बोली, तुम कुछ खाओगी? नहीं। क्यों? यूं ही मन नहीं है। ठीक है, घर चलकर खा लेना। लगा मैं बीमार हो गई हूँ या बूढ़ी हो गई हूँ, जो जरा भी आग्रह मेरे पति ने मुझसे नहीं किया। गाड़ी स्टार्ट हुई, मन बहुत कर रहा था रवि से कहूं पीछे मेरे पास आकर बैठ जाओ, पर ना कह सकी। क्यों नहीं उन्हें समझ में आती हमारी भावनाएं? मैं कहां उनसे कम थी? क्या नौकरी करके मैंने परिवार के दायित्व तो नहीं उठाए? अपना सब कुछ घर बच्चों या रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां निभाने में समर्पित कर दिया, क्योंकि स्वयं से अधिक जरूरी था मुझे उनकी जरूरतें पूरी करना जो हमसे अपेक्षा करते हैं। सबको खुश करने न रात देखा न दिन, न टूटा हुआ शरीर न टुकड़े होते मन। कितनी ही बार टूटी, स्वयं ही संभली, खड़ी हुई और चलती रही चिलचिलाती धूप में नंगे पैर। अकेली तब भी थी, पर तब मेरे साथ उम्मीद की किरण, सपनों का समंदर था जो मेरा सहारा थे। अब टूट गई है उम्मीद, बिखर गए हैं सपने, तन्हा हो गई हूँ मैं। लेकिन यह क्या, आज मन क्यों खोखला हो रहा है? आज रवि घर वापिस जा रहे हैं बिजनेस के कारण। मैंने चाहा तो बहुत था कि जब तक मैं रहूं वह मेरे साथ रहें, क्योंकि अब रिटायर होने और परिवार की जिम्मेदारियां कम होने से

0: बहुत सूनापन लगने लगा है मुझे। नहीं समझ पा रही हूँ, जो भी मार्ग चुनती हूँ रवि क्यों सामने आ खड़े होते हैं। उनसे दूर अपना स्वतंत्र अस्तित्व तलाशना चाहती हूँ, अपनी काबिलियत से कुछ कर गुजरना चाहती हूँ, पर क्यों नहीं कोई रास्ता तय कर पाती हूँ। शादी के पहले तो यह बात ना थी, कितनी कॉन्फिडेंट रहती थी, सारे निर्णय स्वयं लेती थी, पर अब क्यों मैंने स्वयं को अपाहिज और रवि को की वैसा की बना लिया है। पर रवि ने तो नहीं रोका था मुझे, हाँ शायद मुझे ही स्वयं पर विश्वास ना था। रवि की अनुपस्थिति मुझे क्यों परेशान कर देती है, व्याकुल मन क्यों उनके नीड में बस जाने विचलित होता है। अध्यात्म की रगर पर तो रवि की कोई जरूरत नहीं, फिर क्यों ना उस राह पर चल पाती हूँ। हाँ शायद नहीं चल पाऊंगी क्योंकि वहां रवि ना होगा, कोई भी काम रवि के साथ के बिना संभव नहीं लगता। हाँ शायद यही प्यार है, अगला जन्म सार्थक करने के लिए ईश्वर पर श्रद्धा जितनी जरूरी है, यह जन्म सफल बनाने के लिए प्यार भी उतना ही जरूरी है। आज मैंने महसूस किया है रवि के प्यार को। प्यार तो बस प्यार मांगता है, बदले में करता है त्याग, समर्पण। स्वभाव, विचार या परिस्थिति की भिन्नता प्यार भरे दिल को नहीं तोड़ सकते। सच्चा प्यार सारी बातों को दरकिनार कर देता है, किंतु स्त्री मन की विडंबना कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि कहीं कहीं वह संवेदनाओं के उस स्तर पर जहां पुरुष नहीं पहुंच पाता नितांत अकेली होती है। आकाश में घुमड़ती बादलों सा उसका दिल विचलित हो रहा था, विचारों की तंद्रा रवि के फोन की घंटी से टूटी। अरे भाई तुम कब आ रही हो, मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम 2 दिन के अंदर घर लौटाओ, घर काटने को दौड़ रहा है। तुम्हें कब से मेरी परवाह होने लगी, पास रहते हो तो उपेक्षा और झगड़े के सिवा क्या मिलता है, शुभी ने ताना दिया। अरे झगड़ा किए बगैर भी तो चैन कहाँ है, अपनी परछाई से भला मैं दूर कैसे रह सकता हूँ। शुभी तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे मुंह से प्यार शब्द सुनकर मुझे झटका सा लग रहा है, शुभी ने तंज कसा। हाँ शायद तुम्हारा बिछोह ना होता तो मैं कभी भी अपने अहम के कारण अपने प्यार को व्यक्त ना करता। जिम्मेदारियों की व्यस्तता में मैं नहीं जानता मैं तुम्हें कितना सुख दे पाया, पर इतना जानता हूँ तुम्हारे बिना मेरी कोई हस्ती नहीं है। रवि के उदास और बेचैन स्वर ने सुभी को बेचैन कर दिया, आंखें छलक आईं और जैसे सिल गए। पुराने दिनों की स्मृतियां ताजा हो गईं, जब कभी दोनों ने साथ जीने मरने के वादे किए थे। हर सुबह एक नया खुशनुमा दिल लेकर आती तो रात चांद की बारात। वक्त कब रेत की मानित फिसलता गया पता ही न चला, किंतु अब लगता है हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। हाँ अब मुझे ही समझाना होगा रवि को मुझे किन बातों से तकलीफ होती है। एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ शुभी उठी और सूटकेस में कपड़े भरने लगी।
1: सखियों अभी आप सुन रही थी मीना गोदरे जी से कहानी बिछोए, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। फिर एक और प्यारा सा गीत सुन लेते हैं सखियों।

बिल्कुल सखियों, नैनो का क्या कसूर इस बढ़ते तापमान में। तो चलिए बात करते हैं आंखों की सुरक्षा की। सखियों, आंखों की खूबसूरती कम ना होने पाए इस बढ़ते तापमान में, इसलिए ज़रूरी है कि आंखों का खास ख्याल रखा जाए। तो कुछ टिप्स बताते हैं सखियों, ताकि आपकी जो आंखें हैं वो सुरक्षित रहें और नमी बनी रहे। सखियों, इस दौरान आपको चाहिए कि सूरज की तेज विकिरणों से अपनी आँखों की को सुरक्षा के लिए सनग्लासेस पहनें, सर और टोपी पर कपड़े से ढकें और इंतज़ार ना करें, पानी खूब पिएं। दूसरी बात सखियों, आंखों को ठंडा गीला रखने के लिए डॉक्टर की सलाह से कोई एक आई ड्रॉप लिखवा लें और समय समय पर डालें, ठंडक मिलेगी। और साथ ही सखियों, जब भी आप स्विमिंग पूल में जाएं तो अपनी आंखों पर चश्मा जरूर पहनें, ताकि क्लोरीन और पानी के संपर्क में होने वाली जलन, सूजन, खुजली से बची रहे आपकी आंखें। आप बाहर से आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए पहले ठंडे पानी का छिड़काव करें। आंखों पर गुलाब जल, एलोवेरा पैक रुई के फाये से रखकर अपनी आंखों में रखें। खीरा भी आप रख सकते हैं, कुछ देर आंखों को आराम दें। और जब भी सनस्क्रीन लगाएं सखियों, तो सावधानी पूर्वक लगाएं, आंखों में ना जाए। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगी तो आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। और सखियों, अब हम बात करते हैं फैमिली फिटनेस की। सखियों, आजकल बाज़ार में खाने पीने की कई चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन हर चमकती चीज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो यह ज़रूरी नहीं। परिवार की फिटनेस के लिए सही फूड प्रोडक्ट चुनना बहुत महत्वपूर्ण है सखियों। फैमिली फिटनेस में आज हम बात कर रहे हैं सखियों, खाद्य पदार्थ खरीदते समय सबसे पहले उनकी एक्सपायरी डेट और न्यूट्रिशन लेवल ज़रूर देखें। ध्यान देने वाली बात है सखियों कि उसमें कितना शुगर, सॉल्ट और फैट है, क्योंकि अधिक चीनी, अधिक नमक और अत्यधिक तेल वाले खाद्य पदार्थ शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जहां तक संभव हो, पैकेट वाले जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और तले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। इसकी जगह आप घर का बना ताज़ा भोजन, हरी सब्जियां, फल, दाने, दूध, दही, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे भोजन में शामिल करें। बच्चों को भी हेल्दी डाइट ईटिंग की आदत डालें, ताकि मानसिक विकास बेहतर हो सके। केवल स्वाद नहीं, पोषण भी जरूरी है। कई बार लोग विज्ञापनों को देखकर खाद्य पदार्थ खरीद लेते हैं, लेकिन हमें समझदारी से ऐसे उत्पाद को चुनना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हों। और अब सुनवा

सखियों अब बारी है आपको सतर्क करने की, आपकी सुरक्षा आपके हाथ। क्रम में रिमोट एक्सेस डाटा पर हैकर की नजर से सखियों आप सुरक्षित और सतर्क कैसे रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। सखियों, ऑफिस का काम किसी दूर स्थान पर करने के लिए रिमोट एक्सेस का उपयोग आप करती हैं तो आपको मजबूत पासवर्ड अप्लाई करना होगा। ऐसे में जब आप कोई फर्जी ऐप डाउनलोड आप करती हैं तो कभी कभी साइबर हैकर की नजर उस पर होती है और वो प्राप्त एक्सेस कोड का उपयोग हैकर कर लेते हैं, जिससे वो आपकी जरूरी जानकारी और डाटा लीक कर सकते हैं। सखियों, ऐसे में सिस्टम रिमोट एक्सेस अधिक समय तक चालू रखना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए आप क्या करें कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, तो सबसे पहले सखियों रिमोट एक्सेस काम होने पर बंद कर दें। 12 अंकों का मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। सुरक्षा के लिए फैक्टर 2 ऑथेंटिकेशन चालू करें और ओटीपी शेयर ना करें। जागरूक बने, सतर्क और सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। सखियों, सखियों अब समय हो रहा है कि हम आपसे विदा लें। बता दें, इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब दे अनुमति नीलम चौरे को। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण मध्य प्रदेश से सुनिए।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साधना जैन के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे देवी गीत, गैलहाई और लेद।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे साधना जैन के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, प्रस्तुत कर रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं रागिनी तैलंग, इनके स्वर में आज आप सुनेंगे कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रागिनी तैलंग के गाए हुए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
3: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
2: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
3: वही दोपहर 1 बजे।
2: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत दबंग फिल्म से हमने लिया है। आवाजें श्रेया घोषाल और सोनू निगम की हैं, गीतकार जलीस शेरवानी और संगीतकार साजिद वाजिद।

ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत है। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार विशाल शेखर।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। इस वर्ष की बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में उद्यमिता, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए

0: आदर्श नेतृत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य सेवा और समर्पण के जरिए समाज के सभी वर्गों में न्याय, समरसता और लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। यह संदेश उनकी संस्कृत सुभाषितम श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले 10 जून को उन्होंने जनसेवा को सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। श्री मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, इसराइल, इटली, गुयाना और भूटान के नेताओं का धन्यवाद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि कश्मीर से लेकर देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक कवरेज देने की योजना है। कार्यक्रम में प्रसार भारती अध्यक्ष प्रसून जोशी, आकाशवाणी महानिदेशक राजीव कुमार जैन और जयपुर सांसद मंजू शर्मा भी उपस्थित थीं। इंदौर में जारी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र पर पहला सत्र पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की चर्चा जारी है। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कल होगी। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज ही सुनवाई की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिलों के लिए तैयार वैज्ञानिक कृषि रोडमैप को भी लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान के तहत नकली खाद की पहचान, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन और नई कृषि पद्धतियों की जानकारी भी दी जाएगी। भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई को दिल्ली एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर रही है। इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह फिलहाल भोपाल की केन्द्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में है। और अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम के दो रंग देखने को मिलेंगे। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, बुंदेलखंड संभाग के कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। वहीं मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी में ओलावृष्टि का अलर्ट भी है। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मालवा, निमाड़ के जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुर जिले के माकनगर में कल 12 से 15 जून तक अम्बेडकर भवन हाई स्कूल परिसर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगर मालवा कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र हितग्राहियों का ई केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक पूरा कराया जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान

0: ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटीबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रिस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी

0: कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत लेकर हम हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आनंद फिल्म के गीत से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत सलिल चौधरी का है और आवाज लता मंगेशकर की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, नेपानगर से सुदर्शन शाह, ताविश शाह, कुंश शाह, पल्लवी सुरभि, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। ये खत आया हुआ है बगबुड़वा पथरिया से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, और इसी गीत को पसंद करते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म आनंद में।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। ये चिट्ठी आई है आमा खोडरा कबीरधाम से। लिखने वाले श्रोता हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र, कृष्णा, चंद्रदीप, संदीपा और दक्ष प्रिया नेताम। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से इसी गीत को पसंद करते हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, प्रगति नाचानी, मिथिल नाचानी और उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से ये खत आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं योगेश्वर सिंह भारती, डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र, प्रेमाबाई और ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र, सचिन और तरु। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म जहरीला इंसान में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत निर्देशक हैं आर डी बर्मन।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश के कुछ गीत हम आगे भी आपको सुनवाएंगे, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत तैयार किया है, आवाज किशोर कुमार की है और फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। सुनना चाहते हैं कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जाह्नवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं सोहन जोशी, विष्णु जोशी, अंकिता, अमृता और लोकेश जोशी। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल और संदलपुर से कालीचरण यादव।

अब हम आपको सुनवाते हैं रजिया सुल्तान, फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ। बोल जानिसार अख्तर के हैं और धुन बनाई है खय्याम ने। पसंद आप सबकी है। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। ये चिट्ठी आई हुई है शाजापुर से। लिखने वाले श्रोता हैं एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को पसंद करते हैं। तिलदा छत्तीसगढ़ से प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी चंद्र, पिया रानी चंद्र, ओशिम कुमार चंद्र और सोमेन कुमार चंद्र, और धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार और गजेंद्र कुमार चंदन।

और कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं। हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, और ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी फरमाइश पर फकीरा फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए आदर्श नेतृत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य केवल सेवा और समर्पण के जरिए समाज के सभी वर्गों में न्याय, समरसता और लोक कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया और इंदौर में जारी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी का ये मध्य प्रदेश केंद्र है।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी जबलपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और 9:30 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6:00, रात 8:00 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत साइंस एंड टेक पर केंद्रित कार्यक्रम। रात 10:00 सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 सुनिएगा उस्ताद रहमत अली खां का सरोद वादन राग रागेश्री। और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज ग्रामीण बहनें सुनेंगी सुश्री ममता वाजपेयी के साथ की गई भेंट वार्ता, मॉनसून के दौरान किचन गार्डन और बगीचे की देखभाल। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साधना जैन के गाए हुए कुछ लोक गीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है। इनके स्वर में आप सुनेंगे देवी गीत, गैलहाई और लेद।

नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम की इस प्यारी सी मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त तनिष्का।
1: और मैं हूं अनुषा, और हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए ढेर सारी बातें, मस्ती भरे गीत और आज का खास सेगमेंट यानी कि शीर्षक संगीत। तो दोस्तों, काफी सारी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज के सवाल क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, 4,399 दिनों के कार्यकाल के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
0: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आप इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर कार्यक्रम के अंत तक खोज कर रखेंगे और कार्यक्रम के अंत में अपना जवाब ढूंढेंगे कि वो सही निकला है कि नहीं। और तब तक के लिए हम आपके लिए पेश करते हैं प्यारा सा गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, बचपन की सबसे खूबसूरत यादें अगर किसी एक चीज से जुड़ी होगी तो वो अक्सर कोई खिलौना नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बल्कि खेल जरूर होगा। गर्मी की छुट्टियों वाली शामें, दोस्तों के साथ दौड़ना, हारना, जीतना और फिर अगले दिन दोबारा मैदान में पहुंच जाना।
4: और आज 11 जून है और आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो उम्र से बड़ी है, भाषा से बड़ी है और दुनिया के हर कोने में लोगों को जोड़ देती है, और वो है खेल की भावना। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले।
3: दोस्तों, ये दिवस पहली बार 2024 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा शुरू किया गया था। इसका मकसद था लोगों को ये याद दिलाना कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने, दोस्ती बनाने और बेहतर जीवन जीने का एक हिस्सा है।
4: और खास बात यह है कि इस दिन का फोकस सिर्फ बड़े टूर्नामेंट या फिर मेडल नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में खेल और एक्टिव रहने की आदत को बढ़ावा देना भी है। क्योंकि खेल हमें सिर्फ फिट नहीं बनाते हैं, वो हमें धैर्य, टीम वर्क और हार के बाद भी उठना सिखाते हैं।
3: बिल्कुल। और अनुषा, अगर भारत की बात करें तो पिछले कुछ सालों में खेलों को लेकर सोच में भी काफी बदलाव आया है। आज क्रिकेट के साथ साथ बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, एथलेटिक्स, कुश्ती, चेस और न जाने कई सारे खेल भारतीय खिलाड़ी लगातार दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं और खेल रहे हैं।
4: बिल्कुल सही। और अच्छी बात यह है कि अब खेल सिर्फ प्रोफेशनल करियर तक सीमित नहीं रह गए। आज फिटनेस, मेंटल हेल्थ, आत्मविश्वास और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए भी लोग जो है खेलों की तरफ लौट रहे हैं।
3: बिल्कुल।
4: स्कूल से लेकर छोटे शहरों तक मैदानों में फिर से अब वही हलचल दिखाई दे रही है, नहीं?
3: और वैसे अगर ध्यान से सोचे तो हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई खेल जरूर रहा है। किसी के लिए स्कूल का वो पीटी पीरियड, किसी के लिए मोहल्ले की शाम वाली क्रिकेट, किसी के लिए बारिश में फुटबॉल, तो किसी के लिए बस दोस्तों के साथ खेलने का वो वक्त। शायद इसी वजह से खेल सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि यादें बन जाती है, हमारी यादों का एक अटूट हिस्सा बन गया है।
4: बिल्कुल सही। मुझे लगता है जब हम कोई खेल खेलने जाते हैं तो हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ खेल में डूब जाते हैं। लेकिन खेल हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाते हैं तनिष्का, हर बार जीतना उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन हर बार सीखना ज़रूरी है। और मैदान हो या जिंदगी, कई बार गिरने के बाद ही अगला कदम मजबूत होता है।
3: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज इस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक छोटा सा वादा हम खुद से करते हैं कि थोड़ा समय हम अपने लिए निकालेंगे और थोड़ा समय मैदान के लिए और कुछ समय उस खुशी के लिए जो खेल हमें देती है।
4: बिल्कुल। आप खेलते रहिए, एक्टिव रहिए और जिंदगी में वो स्पिरिट हमेशा बनाए रखिए जो खेल हमें सिखाती है, और खेल हमें प्रेम भावना भी सिखाती है। तो इसी भावना में आगे सुनते हैं आज का अगला गीत।

0: दोस्तों, जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो अक्सर हमारी नज़र सूरज, चांद, खुले आसमान या तारों पर चली जाती है। लेकिन उन्हीं के बीच चुपचाप तैरते बादल अपनी एक अलग ही कहानी कहते हैं। कभी सफ़ेद रुई के फूहों जैसे, कभी काले घनी चादर जैसे,
1: तो कभी बरसात की उम्मीद लेकर आते हैं ये बादल। इनका संसार बहुत विशाल है, लेकिन इन बादलों की धीमी चाल में हम खो जाए उससे पहले श्रोताओं को बता दें कि आज के सेगमेंट शीर्षक संगीत में हम बात करेंगे उस शब्द की जो सिर्फ आसमान में तैरता हुआ जल का समूह नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, कल्पनाओं और यादों का भी साथी है। जी हाँ दोस्तों, बादल।
0: बादल जब आसमान में छाते हैं तो ये केवल बाहरी मौसम नहीं बदलते, ये मन के मौसम को भी बदल देते हैं। किसी को अपने बचपन की याद आ जाती है, कभी किसी से मिलने की आस, तो कभी धरती की प्यास बुझाने का वादा, या किसी को गांव की गलियां याद आ जाती है।
1: निदा फाजली ने लिखा है, सुलगती रेत में पानी कहाँ था, कोई बादल छिपा था तिश्नगी में।
0: वाह क्या बात है। वैसे आसमान में तैरते बादलों को देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी कुछ महसूस नहीं किया होगा। कैसे तनिष्का, हम अपने बचपन में बादलों में कोई ना कोई तस्वीरें खोजा करते थे या कोई आकृति देखते थे, कभी घोड़ा, कभी हाथी या कोई गाड़ी बनती नजर आती थी, नहीं?
1: बिल्कुल। और कुछ भी कहो, ये बादल प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। वे किसी किसान के लिए एक अच्छी फसल की उम्मीद लेकर आते हैं, तो कभी प्रेम का संदेश लेकर आते हैं, तो कभी विरह का दर्द।
0: और भारतीय साहित्य और गीतों में तो बादल अक्सर प्रेम का संदेश वाहक माना गया है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध काव्य मेघदूत में तो बादल को प्रेमी का दूत बनाया, जो उसकी विरह वेदना और प्रेम संदेश को दूर बैठी अपनी प्रिय तक पहुँचाता है।
1: बादल अक्सर मिलन और इंतजार दोनों के प्रतीक बन जाते हैं। कभी कोई कहता है जल्दी घर लौट आओ, बादल घिर आए हैं, तो कभी कोई खिड़की पर बैठकर बादलों को देखता है और किसी अपने को याद करता है।
0: और ये बादल बिल्कुल अनजान है, भटके हुए ना जाने कब किसी को किसी की यादों की बरसात में भिगो दे। इससे मुझे याद आता है, निदा फाजली जी ने लिखा है कि बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है।
1: बिल्कुल, बादल तो होते ही दीवाने हैं।

0: दोस्तों, आसमान में भटकते बादलों की हर किसी के मन में अपनी एक अलग कल्पना होती है, और इसीलिए अभी तक हमने बादलों के भावनात्मक और साहित्यिक रूप की चर्चा की। लेकिन वही बादलों का वैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व भी होता है।
1: बिल्कुल सही। अभी तक हमने बादलों को प्रेम, यादों और भावनाओं के रूप में देखा, लेकिन अब जानते हैं कि विज्ञान की नज़र में बादल आखिर क्या है।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आसमान में तैरता हुआ एक साधारण सा बादल लाखों करोड़ों लीटर पानी अपने भीतर समेटे हुए हो सकता है।
1: बादल तब बनते हैं जब सूर्य की गर्मी से समुद्रों, नदियों, तालाबों में पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उठता है। ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण ये भाप छोटे छोटे जलकणों में बदल जाती है और बादलों का निर्माण होता है।
0: लेकिन एक रोचक सवाल ये है कि इतना भारी भरकम जो बादल हो जाता है, ये आसमान में एकदम गिरता क्यों नहीं है? दरअसल दोस्तों, बादलों के भीतर मौजूद जलकण इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हवा के सहारे तैरते रहते हैं। जब ये जलकण आपस में मिलकर बड़े और भारी हो जाते हैं, तभी वर्षा के रूप में ये धरती पर गिरते हैं।
1: और ये सभी बादल एक जैसे नहीं होते। सफ़ेद रुई जैसे दिखाई देने वाले बादलों को सामान्यतः अच्छा साफ मौसम लाने वाला माना जाता है, जबकि काले घने बादल जो हैं वो वर्षा का संकेत देने वाले बादल होते हैं।
0: एक और दिलचस्प तथ्य ये भी है कि बादलों के बिना पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ सकता है, यानी बादल पृथ्वी के प्राकृतिक तापमान नियंत्रक की तरह भी काम करते हैं।
1: और किसानों के लिए तो बादल किसी वरदान से कम नहीं होते। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून और बादलों का सीधा संबंध करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। अच्छी बारिश का मतलब अच्छी फसल, भरे हुए जलाशय और जीवन के लिए पर्याप्त जल।
0: बिल्कुल, एक किसान के लिए बादल सिर्फ आसमान का दृश्य नहीं बल्कि उसकी उम्मीद होते हैं। खेतों में बोए गए बीज, हरियाली से लहलहाती फसलें, नदियों का बहता जल, तालाबों का भरना, सब कुछ कहीं ना कहीं बादलों पर ही तो निर्भर करता है।
1: बिल्कुल सही। बादल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। वे धरती के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं, जल चक्र को चलाते हैं और लाखों जीवों के अस्तित्व को संभव बनाते हैं।
0: दुनिया में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ बादल धरती को छूते हुए दिखाई देते हैं। पहाड़ों पर यात्रा करने वाले लोग अक्सर बादलों के बीच चलने का अनुभव करते हैं। वास्तव में वह बादल ही होते हैं जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे तक आ जाते हैं।
1: कितना सुंदर दृश्य होता है वो। और दोस्तों, जिस तरह हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, वैसे ही प्रकृति में भी बादलों का अपना एक चक्र है। वे आते हैं, बरसते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और फिर किसी नई जगह जीवन की उम्मीद बनकर लौट आते हैं।
0: और शायद यही कारण है कि विज्ञान उन्हें जल चक्र का हिस्सा कहता है और कभी उन्हें जीवन का प्रतीक।

0: तनिष्का, इन सभी रूपों के अलावा बादलों का इस दुनिया में एक अलग रंग, एक अलग रूप भी है, और वो है उपमाओं का, यानी मेटाफर्स।
1: बिल्कुल अनुषा, हम अक्सर बातों में कहते हैं कि बादलों में उड़ना, यानी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना, या किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि बादल पर पांव रखना, यानी कि आसमान छूने के सपने देखना।
0: और जो व्यक्ति एक जगह टिक कर नहीं रहता, उसके लिए हम कई बार कहते हैं कि ये तो आवारा बादल है। इन बादलों को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उपमाओं के रूप में यूज़ किया जाता है, कई बार हम ऐसा उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल, कभी बादल आशा के प्रतीक होते हैं तो कभी संघर्ष के। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी अक्सर बादलों से जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं ना, ये मुश्किलों के बादल भी छट जाए और फिर एक नई सुबह आएगी।
0: या बादलों की तरह आवारगी वाले व्यक्तित्व के लिए भी एक चर्चित वाक्य है, जो अक्सर बड़े ही फिल्मी अंदाज में और एक अलग लहजे में बोलते हैं कि हम तो बादल है, हमारा कोई ठिकाना नहीं, जहाँ प्यार मिला वहीं ठहर गए।
1: बिल्कुल, तो यूँ कहा जा सकता है कि जैसे हम बादलों में अनेक आकृतियाँ या चित्र देखते हैं, उसी तरह इन बादलों के कई रूप, कई उपयोग और कई महत्व भी है।
0: बिल्कुल सही, कुछ उम्मीदें, यादें, कहानियाँ और अनगिनत भावनाएं इनसे जुड़ी है। साहित्य से लेकर विज्ञान तक, खेती से लेकर प्रेम तक, बादलों ने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
1: सच तो ये है कि बादल हमें जीवन, इस जिंदगी को जीने का एक सुंदर संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि बस चलते रहो, बदलते रहो, बरसते रहो, और जहाँ संभव हो किसी की प्यास बुझाते रहो।

0: तनिष्का, बादलों पर इतनी सारी चर्चा करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच ही मेरे दिलो दिमाग में और चारों तरफ बादल छा गए हैं।
1: हमने बातें ही कुछ ऐसी की है अनुषा।
0: अरे मुझे बातों से याद आया, तुम्हें कभी लगा है कि हम जो बोलते हैं वो सिर्फ आवाज़ नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी बात भी किसी का पूरा दिन बदल देती है।
1: बिल्कुल, जैसे कोई अचानक आकर हमें बोल दे कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो या तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, तो बस ये सुनते ही दिल खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल, लेकिन दूसरी

0: कभी कोई बिना सोचे कुछ ऐसा बोल देता है कि वो बात पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती है।
1: सही कहा, ये जो शब्द होते हैं ये दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोलने का तरीका जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
0: बिल्कुल सही, फर्क हमेशा बात में नहीं होता, बोलने के तरीके में होता है। एक शब्द किसी का मन छोटा कर सकता है और वही बात किसी का हौसला भी बढ़ा सकती है।
1: बिल्कुल, और मुझे याद आती है कबीर दास जी की वो सुंदर सी बात कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। मतलब ऐसा बोलो जिसमें अहंकार ना हो, जो दूसरों को सुकून दे और खुद के मन की शांति को भी बनाए रखे।
0: बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं तो माहौल भी अच्छा होता है, चाहे वो घर हो, दोस्तों के बीच हो, ऑफिस में, हर जगह।
1: बिल्कुल, और इसीलिए बड़े भी तो कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसीलिए बोलो ऐसे कि सुनने वाले के चेहरे पे मुस्कान आए।
0: और मुझे इससे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम आज से एक छोटी सी कोशिश करें, बोलने से पहले बस ये सोच ले जो मैं कह रहा हूँ क्या उससे किसी का मन अच्छा होगा।
1: और दोस्तों अगर जवाब हाँ हो तो खुलकर बोलिए, मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए, क्योंकि कभी कभी एक प्यारा सा शब्द किसी का पूरा दिन सुंदर बना सकता है।
0: तो चलिए दोस्तों आज अपनी बातों में थोड़ी मिठास घोलते हैं, क्योंकि मीठा बोलना सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, रिश्तों को भी खूबसूरत बना देता है।

0: तो दोस्तों ये था आज का हमारा युवाणी कार्यक्रम और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको आज के प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। तो आज का पहला प्रश्न था, 4,399 दिनों के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जवाब है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में हुए नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है आर प्रज्ञानंदा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी। अब आपसे अनुमति लेती हूँ मैं तनिष्का
0: और मैं अनुषा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

एक बार फिर आनंद बख्शी की रचना हम सुन रहे हैं फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से किशोर कुमार की आवाज में। ये संगीत है आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के युगल स्वरों में ये गीत हमने चुना है फिल्म बहारों के सपने से। शब्द हैं मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म बहारों के सपने से। शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत था आर डी बर्मन का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत की इस कड़ी को यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
1: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
2: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
2: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
3: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
4: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया
0: जी।
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब यह विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा
0: जी।
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए।

0: बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ आप बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शीला वर्मा के गाए गीत।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शीला वर्मा के गाए गीत। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये अगला गीत।

ये गीत आपने सुना शीला वर्मा की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं ये अगला गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना शीला वर्मा के गाए गीत। इसी के साथ कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हेमलता उपाध्याय और साथियों के गाए लोक गीत। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये गीत।

0: अभी आपने सुना लोक संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is 48 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

श्रोताओ, वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी ही देर बाद 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे बरसात में बकरियों की देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर कविता रावत से मनीषा शर्मा की चर्चा। रात 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम चित्रगीत का समय है 9:15 पर। श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भवन होगा 9:30 पर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित C.R. व्यास का गाया राग मालव। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब आइए आपको कल यानी शुक्रवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। सुबह 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति होगी मुकाम सिंह चौहान की। 7:35 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। 9 आप सुन सकते हैं ममता शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत। 9:15 पर मन्ना डे के गाए गीत हम आपको सुनवाएंगे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद मोइनुद्दीन खां का सारंगी पर बजाया राग सालग वराली तोड़ी। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कल सुबह 10:00। 10:05 पर सुनिए फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम गीत आपके, फोन करिए गीत सुनिए 11:00। फिल्म संगीत 12:00, 2:00 और 2:30 पर। संग्रहालय से ये कार्यक्रम 12:30 पर रिले करेंगे। महिला कार्यक्रम 1:00, लोक संगीत 1:30 पर, सुगम संगीत 1:45 पर। रोजाना शाम 5:00 हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी। 5:45 पर सुनिए फिल्म संगीत। 6:00 आप सुन सकते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे वारसी बंधु के गाए गीत। 6:45 पर भाई राम गप्पू जी और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। शाम 7:20 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुनिए रात 8:00। चित्रगीत का समय है 9:15 पर। 9:30 पर सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पंडित V.G. जोग का वायलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण। ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र, बस कुछ ही पलों में।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में पीएम मोदी का संदेश, दुनिया की अनिश्चितता के बीच आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर भारत। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, इजराइल समेत कई देशों के नेताओं का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 जून को आयुष मंत्रालय के ऑनलाइन योग सत्र में जुड़ने की अपील की और प्रदेश की तीनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित रिटर्निंग ऑफिसर ने सौंपे प्रमाण पत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता बताया। इस वर्ष बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। श्री मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, इजराइल, इटली, गुयाना और भूटान के नेताओं का धन्यवाद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। ये सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा की अमूल्य धरोहर है और आज ये एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 बजे से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी मारविक्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने इस मामले में अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है। हालांकि 24 भारतीय चालक दल की सभी

0: सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बावजूद देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। इंदौर में जारी 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के तीसरे दिन भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक कूटनीति और व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की है और अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। सम्मेलन में शामिल इथियोपिया के एक प्रतिनिधि ने कहा,
1: मैं इंडिया में बहुत खुश हूँ, भारत में बहुत खुश हूँ। हमारा दोनों देश, प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार हमारा देश गया था, तो अच्छा स्टेट विजिट था। हमारा प्रधानमंत्री, इथियोपिया का प्रधानमंत्री भी अच्छे से स्वागत कर दिया मोदी जी के लिए। तो दोनों देशों बीच में अच्छा रिश्ता है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटें भाजपा ने जीत ली है। भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नाम वापसी के अंतिम समय सीमा 3:00 समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में अनियमितता के आधार पर मंगलवार को ही खारिज कर दिया गया था। इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने इस याचिका पर कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10:00 विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों ने इस योजना को अपने जीवन में आए बड़े बदलावों का कारण बताया है। इस योजना के हितग्राही द्रौपदी राय बताती हैं,
3: उज्ज्वला योजना मिलने से ये फायदा हुआ है कि मेरे घर में अब धुओं से राहत होगी तथा महिला और बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो गया है तथा समय की बचत हो गई है। और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस योजना से महिलाओं को सम्मान मिला है तथा जीवन यापन में बहुत सुधार आया है।
0: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने आज भोपाल सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और ट्वीशा शर्मा केस के आरोपी सेवानिवृत्त जज गिरबाला सिंह से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान टीम ने महिला वार्ड, अस्पताल, रसोई घर, पुस्तकालय और आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर का जायजा लिया। सब्जी उत्पादन में प्रदेश देश के अंदर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बताया कि बीते 4 वर्षों में राज्य का सब्जी उत्पादन करीब 21,58,000 मीट्रिक टन बढ़कर 257,99,000 मीट्रिक टन हो गया है। प्रदेश में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल मुरैना, भिंड, ततिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। यशवर्धन सिंह चौहान को कप्तान और लक्ष्य रायचंदानी को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम अगले महीने 3 वनडे और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और खाद वितरण निगरानी की विस्तृत समीक्षा की। खंडवा जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र खालवा में परंपरागत चिकित्सकों भूमका और पढ़िहार के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने सीहोर में सीवन नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। शहडोल संभाग के तीनों जिलों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 126 नए स्कूल भवन बनाने की तैयारी है। मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित भोजनालय के संचालन की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राजगढ़

पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां निरंतर संचालित की जा रही हैं। नीमच कलेक्टर की पहल पर गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बालिका के उपचार के लिए भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी से 1,00,000 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। सिंगरौली जिले में संचालित पांच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। रायसेन स्थित हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा के दरगाह शरीफ परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शिवपुरी में थोक उर्वरक विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक की निगरानी और वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षण दलों का गठन किया गया। छिंदवाड़ा के तामिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिंथोली में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। अशोकनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली गई। जबलपुर में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ कैलाश शाटव ने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

6.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन का आपकी बहन तुलसा की राम राम। भाई बहनों ने मानसून का आने से पहले खरीफ की तैयारी तो आपने कर ही ली होगा, क्योंकि कभी हमारी तैयारी पहले से रहेगा तो हमका हैवाप नहीं होने की। खरीफ की फसल बोने से पहले खेत की गहरी जुताई करी ना घाम लगने देवा। उबड़ खाबड़ जमीन कदी छे तो वह सपाट करी लेवा। उकाम जैविक खाद न कंपोस्ट खाद दई देवा। साथ सबसे जरूरी बात ई छे कि बीज नको उपचार जरूर करी लेवा, जेका से मट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ी जाएगा न हमारी फसल रोग नसी भी सुरक्षित रहेगा। भाई बहनों ने क्योंकि खेत की गहरी जुताई करने से पहले फसल का जो अवशेष छे, कीड़ा मकोड़ा छे, फपून छे, वो सब घाम लगने से नष्ट हो जाएगा। न जमीन एक जैसी करने से बरसात को पानी उका में जमा नहीं होने को न हमारी फसल सुरक्षित रहेगा। साथ ही भाई बहनों ने हम हमारा खेत कार्यक्रम में नई नई जानकारी न भी ले आवा, तो आज हम बात करांगा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का बारा में। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जेका अक्टूबर 2025 से की शुरुआत हुई थी। भारत सरकार ने दाल का आयात पर निर्भरता खत्म करने का लेना न घरेलू उत्पादन का बढ़ावा देने का लेना 11,440 करोड़ रुपया का बजट का साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करी थी। ई 6 वर्षीय मिशन यानी 2025-26 से 2030-31 तक हमारा देश का दाल का क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को एक बड़ो प्रयास छे। इना मिशन को मुख्य उद्देश्य छे उत्पादन में वृद्धि न क्षेत्र को विस्तार करनु। वर्ष 2030-31 तक घरेलू दलहन उत्पादन का मौजूदा स्तर की से बढ़ई न 350,000 लाख टन करनु छे। साथ खेती का क्षेत्र का बढ़ई न 31 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करनु छे। भाई बहनों एक कई फायदा भी छे, जसो कि हमारा जो किसान भाई छे सुरक्षा देने का लेना अगला 4 साल तक तुअर उड़द न मसूर की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित हुई जाएगा। साथ ही किसान भाई न का मुफ्त में बीज किट न प्रमाणित बीज भी मिली जाएगा। एक अलावा उत्पादन पद्धति न का अपनाने का लेना किसान भाई न का 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता भी मिलेगा। प्रसंस्करण का बढ़ावा देने का लेना देश भर में 1,000 दाल मिल न स्थापित करेगा न जेका म हर मिल का 25 लाख तक की सब्सिडी को भी प्रावधान छे। तो भाई बहनों इना मिशन से देश भर का लगभग 2 करोड़ से ज्यादा किसान भाई न का लाभ मिलने की उम्मीद छे। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसान भाई न की आय में तो बढ़ोतरी करेगा, साथ हमारा देश का विदेशी मुद्रा भंडार की बचत करेगा न देश में शाकाहारी प्रोटीन की पोषण सुरक्षा का सुनिश्चित करना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि दलहन में प्रोटीन रेशा न पोषक तत्व न की मात्रा ज्यादा रहे न एका में नाइट्रोजन होने से ये मिट्टी की उर्वरता कभी बढ़ी न रखे। तो भाई बहनों इनी जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन छे एको लाभ हम जरूर लेवा न अपना खेत में दलहन को उत्पादन करा, जेका सी हमारा जो खेत की जो मिट्टी छे ओका में उर्वरक न ओका में जो मिट्टी की पोषक तत्व भी बढ़ेगा न हमका हमारी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा। न भाई बहनों ने ई तो ही अपनी बातचीत न आवा सुना जपन एक लोकगीत रेखा सोलंकी को गायल।

0: किसान भाइयों ने अभी हमने रेखा सोलंकी को गायेली लोकगीत सुनियो। न किसान भाइयों ने हमारा जो किसान भाई छे अब खरीफ की फसल सोयाबीन की बुवाई करेगा तो काम का की किस्म ने लगावा, किस प्रकार से हम बुवाई करा जेका से हमका हमारी फसल को भरपूर उत्पादन प्राप्त हुए, तो एक बारे में ज़्यादा जानकारी का लेना सुना जपन वार्ता। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र का लेना अनुशंसित सोयाबीन की किस्म न उनका गुणधर्म जानकारी दे रहे आज कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नटराज सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। तो सुना जपन इनी वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर नटराज, मैं नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के लिए अनुशंसित सोयाबीन किस्में एवं उनके गुणधर्म के बारे में बताना चाह रहा हूं। जैसे कि आप जानते हो क्लाइमेट चेंज के वजह से जो एलनिनो का आवश्यकता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे बचने के लिए, सोयाबीन क्रॉप को बचने के लिए हमको किसान भाई लोगों को अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज सोइंग करने का मैं रिकमेंड कर रहा हूं। उसमें जैसे कि अर्ली मैच्योरिंग में एक वेराइटी है JS9560 जो कि वो बहुत पुरानी वेराइटी है और वो वेराइटी विभिन्न बीमारियों के लिए ससेप्टेबल है, तो ऐसे वाले वेराइटी मत लगाइए। उसके अल्टरनेट हमारे पास बहुत सारे अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज है जैसे NRC 150, JS 22-12, JS 23-03, JS 23-09, ये सब 90 दिन के अंदर ही पकते हैं। तो ऐसे अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज उगाइए। और इसके अलावा जैसे JS 21-72 ये मीडियम मैच्योरिटी ग्रुप में आते हैं जो 100 दिन के अंदर पकते हैं, ऐसे ये वेराइटी बीमारी जैसे एंट्रेक्नोस, राइजोक्टोनियल ब्लाइट, चारकोल रॉट, ऐसे बीमारी इसमें नहीं लगते हैं और इसका पैदावार भी अच्छा है, तो ऐसे वेराइटी भी आप उगा सकता है। और एक और वेराइटी है JS 20-98, ये 100 दिन से लेके 105 के 5 दिन के अंदर पकते हैं, ये भी अच्छी वेराइटी है, ये भी विभिन्न रोग के लिए इसमें क्षमता है, तो ये वेराइटी भी आप उगा सकता है। तो कुल मिला के जो एलनिनो का स्थिति जो होने का जो चांस है उससे सोयाबीन को बचाने के लिए किसान भाइयों आपसे मेरा अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा शीघ्र पकने वाला वेराइटीज को उगाइए, साथ में 100 दिन वाले और 105 दिन वाले भी उगाइए, लेकिन आप फोकस कर दीजिए शीघ्र मैच्योरिंग वाले में फोकस करना है। और इसके अलावा आप लोगों को मेरा ये निवेदन है कि आप मेड नाली पद्धति यूज कीजिए और ब्रॉड बेड फर्रो पद्धति और मल्चिंग ऐसे कुछ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस भी यूज कीजिए ताकि आपका जो सॉइल में जो नमी है वो आप बचा सके, ताकि आपका जो पैदावार है वो ना घटे। धन्यवाद।
0: किसान बहनों ने अभी हम सुनी रहा था वार्ता, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र का लेना अनुशंसित सोयाबीन की किस्म न उनका गुणधर्म जानकारी दे रहा था कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नटराज सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। न भाई बहनों ने आवा सुना जपन एक लोकगीत जेखा गाया जपना भाई फतेह सिंह परमार राही ना।

0: किसान भाई, उन्होंने अभी हम सुनी रहा था लोकगीत फतेह से परमार राही को गायल न भाई बहन। न देखो, हम खेती कराएं, न खेती का साथ साथ पशुपालन भी कराएं, न पशु न हम गाय भैंस भी पाड़ाएं, बकरी न भी पाड़ाएं, न मछली पालन भी कराएं। हमारा कई भाई बकरी न भी पाड़ा, तो बकरी न की देखभाल किस प्रकार से करा, एक बारे में ज़्यादा जानकारी कर लेना अपन सुना इन्हीं भेंटवार्ता, जो को विषय छे बकरियों की देखभाल। जानकारी देगा डॉक्टर कविता रावत, निनका सी बातचीत करी अपनी बहन मनीषा शर्मा न, तो सुना अपन इन्हीं भेंटवार्ता।
1: भाई बहनों, जैसो कि तुम्हारे सबके मालूम है कि अब यह गर्मी को मौसम धीरे धीरे जाई रहो है, आने गर्मी का जाते सुहावनी बरसात आने वाली है। बरसात आवे तो मौसम कितो सुहावनो हो जावे, जहाँ देखो वहाँ हरियाली और खूब आनंद आवे। पर यह बरसात है नहीं, यह अपना लिए और अपना पशुधन का लिए बहुत सारी बीमारी उन भी लेके आवे।

0: आना अपन यदि इन बीमारियों से बचनो हो तो अपनी और अपना पशुधन की सुरक्षा अच्छे तरह से करांगा, थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखांगा तो बरसात का मौसम में भी स्वस्थ रहांगा और अपना पशु के स्वस्थ रखांगा। अने बरसात का मौसम में बकरी हो उनकी देखभाल, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और उनसे अधिक लाभ कैसे ला, इन सब बात उनकी जानकारी लेने के लिए आज अपना साथ है डॉक्टर कविता रावत, सह प्राध्यापक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू से ही हमारा बीच में पधारिया है। तो सबसे पहला तो कविता जी, आपको हमारा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम।
1: राम राम मैडम। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, बहनों और पशुपालक मित्रों, आकाशवाणी के इस विशेष पशुपालन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्षा ऋतु में लगभग हर बकरी पालक के लिए महत्वपूर्ण है। बरसात के मौसम में बकरियों की देखभाल, स्वस्थ बकरी, अधिक लाभ। मित्रों, भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के लाखों छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर तथा महिलाएं अपनी अतिरिक्त आय और आर्थिक सुरक्षा के लिए बकरी पालन पर निर्भर है। बकरी पालन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कम पूंजी, कम भूमि और सीमित संसाधनों के साथ भी हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यही कारण है कि बकरी को अक्सर गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है, या हम कहें कि गरीबों की गाय कहा जाता है। आज बाजार में बकरी और दूध मांस की मांग लगातार बढ़ रही है। बकरी का दूध सुपचाय माना जाता है। ये प्राचीन काल से हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं कि बकरी का दूध है वो सुपचाय है और वो इजिली डाइजेस्टेबल है, क्योंकि इसके फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ये औषधि गुणों के लिए के कारण भी पसंद किया जाता है। वहीं बकरी का मांस प्रोटीन से भरपूर होता है, इसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। इसलिए बकरी पालन आज केवल परंपरागत गतिविधि नहीं बल्कि एक लाभकारी व्यवसाय बन चुका है। लेकिन साथियों, जहां एक और बरसात का मौसम खेतों और चरागाहों में हरियाली लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर यह बकरी पालन के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर देता है। यदि इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो बकरियां अनेक बीमारियों का शिकार हो सकती हैं।
0: मैडम, यह बात तो सही कही आपने कि बरसात को मौसम है, वो बीमारी हो उनको मौसम भी केवायो चाहिए। तो बरसात का मौसम में बकरी ना ज़्यादा बीमार क्यों पड़े, यो प्रश्न सबसे पहला मन में आवे, तो एक बार हमें आप बताओ जरा।
1: आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर बरसात के दिनों में बकरियां अधिक बीमार क्यों पड़ती है। मानसून के दौरान वातावरण में नमी काफ़ी बढ़ जाती है, लगातार बारिश के कारण जमीन गीली रहती है, कई जगहों पर पानी जमा हो जाता है और पशुशालाओं में नमी बनी रहती है। यह स्थिति जीवाणुओं, विषाणुओं, फफूंदों, परजीवियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। बकरियां स्वभाव से सूखे स्वच्छ वातावरण में रहना पसंद करती हैं। जब वे लंबे समय तक गीली और ठंडी परिस्थितियों में रहती है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वो प्रभावित होने लगती है। ऐसे में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव आसानी से उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अतिरिक्त वर्षा ऋतु में चरागाहों में पेट के कीड़ों के अंडे और लार्वा तेजी से बढ़ने लगते हैं। संक्रमित घास पर ये परजीवी बकरियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। इसीलिए हमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: अन्य देखो, वैसे तो अपन लोग बकरियों के सुरक्षित स्थान पर रखा जे, पर बरसात का मौसम में बकरी शेड या गोट को कई महत्व है, इन बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: बकरी शेड या गोट का बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय पशुपालक भाइयों और बहनों, यदि मैं आपसे पूछूं कि बरसात में बकरियों को स्वस्थ रखने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है क्या है, तो उसका उत्तर होगा एक साफ सूखा हवादार शेड। बरसात के मौसम में पशुशाला का प्रबंधन ही आदि बीमारियों को रोका जा सकता है। शेड हमेशा ऊंची जगह पर बनाएं ताकि वर्षा का पानी प्रवेश ना करे और वो इजिली बह जाए। जहाँ पानी भरता है वहां बकरी के शेड नहीं बनाना चाहिए, हमेशा ऊंचे टीले पे बनाने की कोशिश करें। यदि फर्श कच्चा है तो उस पर सूखा भूसा, लकड़ी, बुरादा, सूखी पत्तियां या अन्य बिछावन सामग्री डालनी चाहिए। गीली बिछावन को तुरंत बदल देना चाहिए क्योंकि यही नमी रोगों को जन्म देती है। एक बात और ध्यान रखें, शेड में हवा का आवागमन हमेशा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ठंडी हवा सीधे पशुओं पर नहीं लगना चाहिए। पर्याप्त वेंटिलेशन से नमी कम होती है और श्वसन रोगों का खतरा घटता है।
0: यह बात तो सही कही कि तेज हवा जब चलेगी उस समय तो पशु होने उससे बचा, अपना जो बकरी होने उनके उससे बचाना भी बहुत जरूरी है। आने देखो, पर जब ठंडी हवा लगी जाए या ठंड या शीत के हो जाए, कि शीत यदि पशु के लगी जाए तो निमोनिया की समस्या भी बरसात का मौसम में देखने में आवे, तो इका बारा में आपका कोई विचार है?
1: जी, निमोनिया बरसात की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे छोटे बच्चों में भी निमोनिया बरसात में या ठंड में हो जाता है, उसी तरीके से हमें अपनी बकरियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा और उनको भी अपने बच्चे के ही समान आपको व्यवस्थित रखना होगा। बरसात में बकरियां सबसे सामान्य और खतरनाक बीमारियों से एक है निमोनिया। जब बकरियां लंबे समय तक बारिश में भीगती हैं, गीले फर्श पर रहती हैं, उनके फेफड़ों में संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में पशु को हल्की खांसी आती है, लेकिन समय समय पर उपचार मिलने पर यह गंभीर रूप ले लेता है। निमोनिया से प्रभावित में बुखार, तेज सांस लेना, नाक से स्राव होना, सुस्ती, भूख कम लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विशेष रूप से नवजात बच्चों और गर्भित बकरियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता दूसरों के कंपैरिजन में कम होती है।
0: निमोनिया का लक्षण तो आपने बता दिया, पर निमोनिया से बचाव के लिए आपने पहली बात तो बताई कि सूखा स्थान पर रखो बकरियों के, ठंडी हवा से बचाओ। इसका अलावा डॉक्टरी सलाह के बारे में आपको कोई विचार है?
1: डॉक्टरी सलाह के बारे में हमारा ये विचार है कि आपको जो है उनको हमेशा सूखी जगह और प्रॉपर वेंटिलेशन वाली जगह में आप उसको रखना चाहिए। जितना आप बचा के रखेंगे उनको, जितनी गिलाहट, जितनी नमी से बचा के रखेंगे, आप रख रखाव ही सबसे बड़ा विशेष तरीका यही है कि आप रख रखाव अच्छा करें उनका, नमी से बचाएं, बारिश से बचाएं और हवादार जगह पे रखें ताकि वो उसका सूखता रहे, तो कभी भी बकरियों में किसी भी तरीके का संक्रमण होने की चांस नहीं रहेंगे।
0: और फिर भी यदि लगे कि पशु के, आपने बकरी के ठंड लगी रही है या फिर इसे लगी रही हो कि निमोनिया की संभावना हो सकती है, तो तुरंत डॉक्टर के दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो आजकल रोग जो है वो यदि बढ़े उससे पहला उसको उपचार हो जाएगा तो यह कितनी अच्छी बात रहेगी। और देखो, निमोनिया का साथ साथ में अपने दस्त और पाचन संबंधी समस्या भी देखने के मिले, क्योंकि स्वाभाविक है बरसात को मौसम है, चारों ओर कीचड़ है, तो जितनो हिरनो फिरनो घूमनो फिरनो बकरी हो उनको दूसरा मौसम में हो जाए, उतनो बरसात का मौसम में नहीं हुई पाए, तो इसका लिए पाचन संबंधी समस्या उन भी देखने के मिले, तो इन्हीं समस्या से निजात पाने के लिए अपने कई करना चाहिए।
1: मित्रों, बरसात के मौसम में दस्त की समस्या बहुत आम बात है। कई बार पशुपालक हरे चारे की उपलब्धता देखकर अत्यधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने लगते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि चारा गीला है, सड़ा हुआ है, फफूंद युक्त है, तो दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा चारे को सूखा रखें, गीला ना रखें, उसमें नमी ना आने दें। दस्त होने पर शरीर से पानी और आवश्यक खनिज लवण निकल जाते हैं, परिणाम स्वरूप पशु कमजोर हो जाता है, वजन कम होने लगता है और दूध उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसलिए हमेशा स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं और खराब गुणवत्ता वाला चारा कभी ना खिलाएं और नमी और हवादार घर में ही उनको रखें।
0: आपने यो बताया कि कई नहीं खिलाना चाहिए, पर इना मौसम में बकरी के किस तरह को आहार देना चाहिए इसका बारे में भी हमारे यदि पशुपालक भाइयों की जानकारी रहेगी तो वो अच्छा आहार बकरी के दी पाएगा।
1: हाँ, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप जो भी आहार दें हरा चारा दें, लेकिन उसको कम मात्रा में दें, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दें। कोशिश करें सूखा चारा दें और सूखा चारा भी नमी से दूर हो, उसको थोड़ा धूप में रख के उसको सुखा के और फिर उनको दें।
0: और पानी की कई व्यवस्था, मतलब किस तरह को पानी, कहें कि खान पान बहुत मतलब के महत्व भूमिका रखे अच्छा स्वस्थ व्यक्ति का लिए, तो स्वास्थ्य का लिए किस तरह को पानी क्यों जाए ना, कि बरसात में अपन देखा कि पशुपालक उन कहीं भी भरी हो वो पानी किसी भी तरह को पशु के पिला ही दे, तो उससे बचना चाहिए।
1: पानी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आप जिसमें पानी पिला रहे हैं, जिसमें आप पानी रख रहे हैं जानवर के लिए, उसको भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, साफ मंजा हुआ होना चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि पानी में किसी भी तरीके का कचरा ना हो, बहुत ठंडा पानी ना हो और स्वच्छ पानी उनको पिलाएं।
0: यह बात तो बिल्कुल सही कही। साथ ही साथ अपन देखा बरसात का मौसम में बकरी उनका पेट में कीड़ा होने की समस्या भी देखने के मिले, तो इससे बचाव का कई कई उपाय है।
1: पेट के कीड़ों से बहुत जरूरी है बचाव करना। बरसात के पेट के कीड़ों का प्रकोप बकरी पालन की सबसे बड़ी समस्या है। यदि आपकी बकरी का वजन कम हो रहा है, बाल रूखे हो रहे हैं, आंख में पीलापन आ रहा है या सफेदी दिखाई दे रही है, पशु कमजोर लग रहा है, पेट के कीड़ों, ये पूरे संकेत पेट के कीड़ों के हैं, तब आपको नियमित रूप से कृमिनाशन कराना चाहिए, जिसको हम आम भाषा में डीवॉर्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वर्षा प्रारंभ होने से पहले तथा पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार मानसून के दौरान कृमिनाशक दवाएं अवश्य दें।
0: कृमिनाशक दवाई देने से स्वाभाविक है बकरियों के जो पेट में कीड़ा है इन्हीं समस्या से निजात मिलेगी। इसका साथ साथ जो पशु होने उनके संतुलित पोषण और खनिज तत्व का देना भी बहुत जरूरी है, तो इसका महत्व का बारे में हमारा पशुपालक भाइयों की जानकारी दो।
1: सिर्फ रोगों से बचाव पर्याप्त नहीं है, आपको संतुलित पोषण, खनिज तत्वों सब देना होगा। बरसात के मौसम में संतुलित पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा अवश्य दें, इसे पाचन क्रिया संतुलित रहेगी, खनिज

0: मिश्रण और नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करें, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उत्पादन बेहतर होता है।
1: कविता जी, एक बात और आई रही है कि टीकाकरण अपने देखने में आवे, और सभी लोग कहवे हैं कि जैसे ही मौसम बदले, बरसात को मौसम आवे, तो टीकाकरण बहुत सारी बीमारियों से बचाव को सबसे बड़ो सुरक्षा कवच है। तो टीकाकरण से अपन किस तरह से पशु के बच सकता है रोगों से, और कौन कौन सा टीका या किस प्रकार से टीकाकरण हमारा पशुपालक भाइयों के करवाना चाहिए?
0: प्रिय पशुपालक भाइयों और बहनों, टीकाकरण रोगों से सुरक्षा कवच, ये एक कहावत हमने सुनी है, इलाज से बेहतर बचाओ। और हम ये बहुत मिथ है हमारे यहाँ कुछ किसान भाइयों में कि वो कई बार टीकाकरण कराने नहीं चाहते, लेकिन मेरा आप लोगों से बहुत अनुरोध है और निवेदन है कि आप जब भी, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो आप अपने पशु, अपने जितने भी आप बकरी पाल रहे हैं, उनका जरूर और अवश्य टीकाकरण करवाएं, क्योंकि आप सब लोगों के पास, सबके पास में कहीं ना कहीं पशु चिकित्सक अवेलेबल है, पास में अवेलेबल है, छोटी यूनिट में भी अवेलेबल है। आप उनके पास जाएं और जरूर सबसे पहले तो उनसे मिलें, उनसे बात करें, और वो आपको टीकाकरण की विस्तृत जानकारी देंगे, और आप टाइम टाइम पे उनके पास पहुंच के बकरियों में टीकाकरण करवाएं। बकरियों में पीपीआर, एंटेरोटॉक्सिमिया, खुरपका, मुंहपका तथा अन्य संक्रमण रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाना अत्यंत आवश्यक है। मॉनसून शुरू होने से पहले टीकाकरण पूरा कर लेना सबसे अच्छा माना जाता है, और सबके पास नजदीक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब इजीली जा सकते हैं और सब टीकाकरण करवा सकते हैं, और वहां पे सब जगह अवेलेबल है। तो मेरा ये बहुत निवेदन है आप लोगों से कि आप जरूर करवाइए, क्योंकि हमारे किसान भाई इस बात से बचते हैं, सब फ्री में अवेलेबल है तो जरूर जाएं।
1: बिल्कुल, ये शुल्क रहित है यदि तो बिल्कुल, हाँ। निशुल्क जो सेवा दी रही है सरकार, उनको लाभ जरूर उठाना चाहिए। और देखो, फिर भी अपन सब सुरक्षा उनको ध्यान दा, पर फिर भी देखने में आया कि बीमारी तो कभी न कैसे न कैसे घेरिज ले, तो बीमारी की पहचान व्यक्ति कैसे करे कि बकरी में किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई किसी प्रकार से बकरी जो है वह अस्वस्थ नजर आ रही है, उनकी पहचान कैसे करे?
0: जैसे हमारे पशुपालक भाई बहन सब अपने जानवरों के साथ रहते हैं, अपने जानवरों का ध्यान रखते हैं, जब हम अपने जानवरों का ध्यान रखते हैं, हम चाहे किसी भी पशु का ध्यान रखें, बकरियों का ध्यान रखें, हम रहते रहते उनके साथ हम बहुत अच्छे से मिल घुल जाते हैं, और हमें समझ में आने लगता है कि कौन सा जानवर जो है हमारा या हमारी जो बकरी है स्वस्थ है या नहीं है। तो हर दिन अपने पशुओं को ध्यान से देखें, यदि कोई बकरी सुस्त दिखाई दे, चारा कम खाए, या बार बार लेटी रहे, या वो हल्का हल्का खांसे, दस्त करे, या सामान्य व्यवहार से अलग दिखे, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। रोग की प्रारंभिक अवस्था में उपचार अधिक प्रभावी और कम खर्चीला होता है।
1: ये तो बिल्कुल सही बात की आपने, और बहुत अच्छी जानकारी हमारा किसान भाई उनके आपने दी। पर चलते चलते और हमारा किसान भाई उनके आप कही कहना चाहोगा?
0: मैं सारे प्रिय पशुपालक मित्रों से कहना चाहूंगी, बरसात का मौसम बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सही प्रबंध अपनाकर इस अवसर में बदला जा सकता है। साफ और सूखा शेड, संतुलित आहार, स्वच्छ पानी, नियमित कृमिनाशन, समय पर टीकाकरण तथा सतर्क निगरानी, ये 6 बातें आपकी बकरियों को स्वस्थ रखने की कुंजी है। और ये एक गरीबों की गाय कहा जाता है, इसलिए हमेशा याद रखिए, स्वस्थ बकरी ही अधिक दूध देती है, तेजी से बढ़ती है, बेहतर प्रजनन करती है, और अतः अधिक लाभ प्रदान करती है। इस संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी।
1: डॉक्टर कविता रावत, सह प्राध्यापक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू से आप हमारा बीच में पधारिया था, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों उनके दी, कल ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम, आपके साथ मुझे भी बात करने में बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, और सभी से मेरा ये संदेश देना चाहूंगी, और मैं इसी के साथ सारे पशुपालक को बोलूंगी कि वो अपने बकरियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और अधिक से अधिक लाभ लें। धन्यवाद।
2: किसान बहनों, अभी हम सुने रहा था भेंटवार्ता बकरियों की देखभाल, जानकारी दे रही थी डॉक्टर कविता रावत, जिनका से बातचीत करी थी अपनी बहन मनीषा शर्मा ने। भाई बहन होनी, देखो अब खरीफ की तैयारी तो आपने करी ली होगा, बीज बीजे भी तैयार करी ली होगा, न बीज न खा बोना से पहले उको बीजोपचार जरूर करी लीजो, क्योंकि बीजोपचार करने से हमारी जो फसल रहेगा उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी रहेगा, पौधा अच्छा मजबूत रहेगा, न रोग की शुरुआत में हमका लक्षण पता चली जाएगा तो हम उसकी नियंत्रण करी सका, न ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्वस्थ पौधाने की संख्या भी रहेगा, न कभी इन्हीं सब बातों को ध्यान रखांगा, न बीजोपचार करांगा तो निश्चित रूप से हमका हमारी फसल की पैदावार अच्छी होगा, न ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी हमका प्राप्त होगा। न चलते चलते एक लोकगीत आरू सुनी लेवान भाई बहन, रामचंद्र गंगोलियन उनकी मंडली को गायल।

भाई नोनी, अभी हमने रामचंद्र गंगोलिया ने उनकी मंडली को गायली लोकगीत सुनियो न। अब चलते चलते काल की भी तय कर लेवा। कल सवेरा खेती की बात में अपन सुनांगा सोयाबीन जल प्रबंधन का बारे में जानकारी न। संजा की घड़ा खेती गृहस्थी में अपन सुनांगा जल संरक्षण न खेती में नवाचार का बारे में जानकारी। एका बारे में हमका जानकारी देगा मीनाक्षी श्रीवास्तव न। एका साथ भाई बहन नोनी, हमारो आज को खेती गृहस्थी कार्यक्रम को समय भी समाप्ति रोज। तो अपनी बहन तुलसा का देव आज्ञा। राम राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

भुलाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही आज मुझे याद आने लगे हैं, दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम सुनने वालों को अमृता का नमस्कार। चलिए चलते हैं गीतों का हाथ थाम कर यादों के सफर पर।

यादों से भीगी रातों में फिर कोई सुहानी याद आई, कुछ अपना जमाना याद आया, कुछ उनकी कहानी याद आई। हम भूल चुके थे किसने हमें दुनिया में अकेला छोड़ दिया, जब याद किया तो एक सूरत जानी पहचानी याद आई। कुछ पाँव के छाले, कुछ आंसू, कुछ तन्हाई, कुछ गर्दे सफ़र, इस बिछड़े हुए हमराही को एक एक निशानी याद आई।

0: क्या कहें उन रिश्तों को जो वक्त की गिरफ्त में आ गए हों। हम मिले भी, साथ चले भी, पर वक्त ने दूर तक चलने नहीं दिया। दिन तो गुजर जाता है जीने की आपाधापी में, पर रात, उन रातों का क्या करिए जो नींद आने की कोशिश में गुजर जाती है। मिलने की चाहत है पर कोई आस नहीं। तुम सपने में आओ ये भरोसा दिलाओ तो सो जाओ।
1: मदन मोहन जी, उनको क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था, खुद बहुत सुरीला गाते थे। उनकी जितनी कंपोजिशंस होती थी उसमें किसी ना किसी रंग की ठुमरी का अंदाज या किसी राग का अंदाज वो ले करके वो उसको अपने रंग में ढालते थे। और फिर ऑर्केस्ट्रेशन का ब्लेंडिंग ऐसा होता था जो कह सकते हैं कि ये मदन जी की छाप है। मदन जी का और लता जी का जो कॉम्बिनेशन रहा, उन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए और लता जी ने उसको इस उबे से, इस अंदाज से गाया कि जिसको कहते हैं कि कंप्लीट ब्लेंडिंग जो है कंपोजर की और सिंगर की, उसमें सुनने को और देखने को मिलती है।

एक रात वो गया था जहाँ बात रोक कर, अब तक रुकी हुई हूँ वहीं रात रोक कर। उसकी फितरत परिंदों सी थी और मेरा मिजाज दरख्तों सा। उसे उड़ जाना था और मुझे कायम रहना था। तोड़ा तो कुछ इस अदा से ताल्लुक उसने गालिब कि सारी उम्र हम अपना कसूर ढूंढते रहे। उफ, हालात से मजबूर होकर वो कुछ ऐसा कह गया, मेरा मैं वहीं रह गया और वो आगे बढ़ गया। उसके हाथ की गिरफ्त जब ढीली पड़ी तो महसूस हुआ शायद ये वही मोड़ है जहाँ से रास्ते अलग होते हैं।

एक बार दिल को ठेस लग जाए तो अगला कदम बढ़ाने में डर सा लगता है। चाहे नई जिंदगी पुकार रही हो पर पुरानी यादें डरा देती हैं। ऐसे में लगता है कि बाहरों की गलियां अब मेरे लिए नहीं। जिंदगी को द्वंद्व से ना झेलो, एक नई राह अपना लो, खुले मन से आगे बढ़ो और जिंदगी खुल के जियो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: Participation at the summit.
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
9: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
8: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
10: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
8: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब

0: तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में यह गीत था फिल्म नूर महल से। शब्द थे सबा अफगानी के और संगीत जानी बाबू कव्वाल के।
1: तू भी आ जा के आ गई।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म मर्यादा से। शब्द आनंद बख्शी के और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत था फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से। आवाज थी मोहम्मद रफी की। इसी के साथ कार्यक्रम चित्रगीत को अब यहीं विराम देते हैं।

0: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्रोताओं की फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

मन भावन सुनने वालों को अमृता का नमस्कार। आपके ढेर सारे पत्र और पत्र में आपकी फरमाइश, कंप्यूटर पे आप ही की पसंद किए हुए ढेर सारे गीत। आइए सुनते हैं बिना देर किए ये पहला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म मदारी से। शब्द थे फारूक कैसर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी भड़भूंजी जिला आगर से रघुनाथ मालवी, भवर बाई, सुषमा पुष्पा, ममता, मंजू, बबिता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन, ओम प्रकाश और साथी। इसी गीत की फरमाइश हमें आई कुंदानगर खरगोन से ध्रुवास सोनवणे, सुनीता सोनवणे, खुशी सोनवणे, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणे की। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से हमारे श्रोता हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद रजियाबी, जुनेद अलीना आयात और जहां मुआज मंसूरी। कंवड़ कॉलोनी बड़वाह से हमारे श्रोता हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। आइए सुनते हैं आप ही की पसंद का अगला गीत।

समाधि फिल्म से आपने ये गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत दिया इस गीत में आर डी बर्मन ने और फरमाइश भेजी आप सबने धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, साइमा हसनैन और खुशी। हाथीगेट राजपुर से संतोष पाटिल, लाडली पाटिल, संजू भाग्या, नेहा बरखा, सावनी पार्थ और हर्ष पाटिल। छाबड़ा राजस्थान से हमारे श्रोता हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इसी गीत की फरमाइश हमें आई राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। भेजने वाले हैं मनमोहन राजावत, मधु राजावत, चित्तरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रितिका, रिचा, रिया, रीत, स्वीटी, सागर और समस्त राजावत परिवार। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से हमारे श्रोता हैं धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी, जिम्पी, अमिता, दियाना और जियांश मटाई। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कैफी आज़मी का कलाम था ये, फिल्म कागज़ के फूल से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और पसंद आप सबकी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना और विपुल कांबड़े। मालीपुरा बिजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता चौहान, प्रियंका परमार, पंकज सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन मुस्कान, अदव्या, अंकिता सलोनी, लड्डू कान्हा और रिशु चौहान, साथ में हैं हेमंत। मालेगांव से दत्ता घयाल, सुनीता बाईस, सानिका और गजानन घयाल। दिल्ली शहर से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।

जहरीला इंसान, इस फिल्म से आपने ये गीत सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आरडी बर्मन का, और पसंद आप सबकी। सुमानी नगर इंदौर से बीआर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, स्वाति, टोनी और निधि। घंटाघर चौक खंडवा से हमारे श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। प्रमिला गंजालोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दतरेगी से भगवत वर्मा।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत था फिल्म बड़े दिलवाला से। शब्द थे मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत आरडी बर्मन का और पसंद आप सबकी मॉडल टाउन करदाल से मीनाक्षी तिवारी, सुधीर नूतन, लावरा भैरू इंदौर से अनिल बमनिया, प्रमिला बमनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कृणाल, केतन और समस्त बमनिया परिवार। दुबे के बगीचे इंदौर से महेश रायकवार, अमृता रायकवार, नितिन कृष्णाबी, सरिता अहिल्याबाई रायकवार। पटेल नगर मालोट पंजाब से

ये खत हमें लिख भेजा डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जजोरिया। प्रणाम सिटी खंडवा से हमारे श्रोता हैं यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी और अजय गंगराटे। अहमदपुर खैगांव से, खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर और वेदिका फूलमाली।

शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत था फिल्म सोहनी महिवाल से। शब्द थे आनंद बख्शी के और संगीत अन्नू मलिक का। इस गीत की फरमाइश हमें आई महादेव घाट अमलेश्वर से। भेजने वाले हैं डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। MPB रोड ताल जिला रतलाम से मुकेश कुमार वर्मा, माया वर्मा, अबराम वर्मा, यतिन राज वर्मा, मोहनलाल खारीवाल और विनोद कुमार वर्मा। गांव रतनपुर तहसील झिरन्या जिला खरगोन से भगीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य और गुनगुन। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमणे, वैष्णवी ढोमणे, चंचल ढोमणे और अर्जुन गवनेकर। साथ में हैं धीरज सवासरे। इसी गीत की फरमाइश हमें आई मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल और नानूराम कसोटिया की।

ये गीत आपने सुना फिल्म देश परदेश से लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजेश रोशन ने इस गीत में संगीत दिया और इस गीत को लिखा अमित खन्ना ने, और पसंद किया आप सबने दुर्गा चौक जूनापानी सनावत से कालू सिंह बडोले, सीताराम बडोले, हीरालाल बडोले, तेर सिंह साहिल, हरिओम, विशाल और सुमन, साथ में है भावना। जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कणिका, आदित्य और मन पटेल। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना परी, गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे, नारायण भाव खर्चे। इसी गीत की फरमाइश हमें आई बसमत जिला हिंगोली से, भेजने वाले हैं रामचंद्र।

इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजुषा और गौतम इंगोले, नेवासा खुपटी से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, श्रावण अनीता बिड़वे,

ये गीत है फिल्म तेरी कसम से। ये संगीत है आरडी बर्मन का, शब्द हैं आनंद बख्शी के, आवाज अमित कुमार और लता मंगेशकर की।

तीसरी कसम, इस फिल्म से आपने ये गीत सुना। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में शब्द थे, आनंद बख्शी के और संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सबकी। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। अजीत नगर मालोट पंजाब से चिंदर सिंह चिंदा, सतनाम कौर, दलप्रीत सिंह और गगनदीप कौर। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले और आरती जोधले इस गीत को सुनना चाहते थे। हमारे श्रोता है सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा और निशी।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में ये गीत था फिल्म चलते चलते से। जावेद अख्तर के शब्द थे और संगीत था जतिन ललित का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी मेंढकी रोड देवास से नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत। उपाध्याय नगर देवास से मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन। रूपा खेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु कपिल। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी लखनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक ने। मलकापुर से संजय पाटिल, उषा प्रथमेश निवृत्ति, सतीश जगदीश, संजय इस गीत को सुनना चाहते थे। वंदना नगर एयरपोर्ट से गरीब नवाज कॉलोनी से पूजा बबीता, शोभा रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परी ललिता, गणेश कार्तिक, भाऊ नारायण भाव खर्चे। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमणे, वैष्णवी ढोमणे, चंचल ढोमणे, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासरे।

इस गीत की फरमाइश हमें आई वाशिम से गवा सिंह राठौर, सतीश, अभय, अजय, यश और सुमन की। छत्रपजी छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांवले, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपने सुना पंडित सी आर व्यास का गाया राग मालव। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: Youth to working life to old age.

0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे